मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ उपस्थित है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं वंदना में सबसे पहले समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। वंदना की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं जगजीत सिंह व साथियों की आवाज़ में ये भजन।

जाकर उनसे पूछता। गौसुलवरा ये कहते उसे मुस्कुरा के, हाँ दीनार मेरे पास है 40 बेगू।

उस घड़ी अफसर से यूं कहा, माँ ने दिया था हुक्म किया मैंने जब सफर के, सच बोलना हर

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए संकीर्णता का त्याग विषय पर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के विचार।
1: आजकल सारे संसार में जिस प्रकार लोकतंत्र की ललक है, वैसी किसी अन्य शासन प्रणाली की नहीं है। यह आधुनिक युग की प्रगतिशील भावना का ही परिचायक माना जाता है, क्योंकि संसार अपने सुदीर्घ इतिहास में अनेक प्रकार की शासन प्रणालियों की परीक्षा करते करते अंत में इस परिणाम पर पहुंचा है कि यही प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र के आदर्श किसी देश में पूरी तरह लागू हैं कि नहीं, इस पर मतभेद हो सकता है, परंतु इस प्रणाली की श्रेष्ठता एक प्रकार से अब विवाद का विषय नहीं रह गई है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र के माध्यम से मानवीय अस्मिता की जैसी पुष्टि होती है, वैसी किसी अन्य तंत्र के माध्यम से संभव नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। भारत के संविधान में बोलने और लिखने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और भारत में सर्वत्र अबाध संचरण और किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इन समस्त स्वतंत्रताओं के मूल में वैचारिक स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से विद्यमान है। तभी तो प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ के साथ साथ क्षेत्र, भाषा, खानपान, पहरावा आदि का चयन करने में भी स्वतंत्र है। यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि दुर्भाग्य से हम

स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वच्छंदता और कभी कभी उच्छृंखलता ले लेते हैं, तभी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं और लोकतंत्र की मानवीय अस्मिता की भावना खंडित होती प्रतीत होती है।

0: शिक्षित समुदाय भी अव्यावहारिक संकुचित विचारों और परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सभा मंचों से रूढ़िगत पुरानी परंपराओं को छोड़ने की बातें बेशक करते हों, किंतु जब स्वयं के व्यवहार का समय आता है तब पुरानी सदियों से चली आती गतानुगतिक परंपराओं को तथा संकीर्ण विचारों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। विचारों की संकीर्णता सभ्य सुसंस्कृत मानव समाज के लिए अभिशाप है और विचार तथा व्यवहार की उदारता वरदान है। संकीर्णता एक प्रकार से कूपमंडूक वृत्ति है। कुएं में पैदा होकर पलने बढ़ने और मर जाने वाला मेंढक कुएं के पानी से अधिक समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार सीमित विचारों के दायरे में रहने वाले व्यक्ति की सोच भी बहुत सीमित और संकुचित होती है, जो उसे दूसरों के उदार और व्यापक विचारों को सुनने समझने तथा व्यवहार में उतारने की अनुमति नहीं देती। यहीं से विचारों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। बहुत प्राचीन काल से विचारों की इसी संकीर्णता के परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता और संस्कृतियों का संघर्ष होता रहा, जो संघर्ष आज तक जारी है। 21वीं शताब्दी में भी मानव एक ओर वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर स्वयं को आरूढ़ मान रहा है तो दूसरी ओर वैचारिक संकीर्णता के दलदल से निकल नहीं पा रहा है। इसका सीधा दुष्परिणाम धार्मिक सांप्रदायिक मजहबी क्षेत्रीय भाषाई और अन्य अनेक प्रकार की संकीर्णताओं से घिरा तथाकथित सभ्य मानव परस्पर के युद्धों में स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा रहता है। वैदिक उक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा और विद्या ही है जो मनुष्य को संकीर्ण विचारों से बाहर निकालकर उदार बनाती है। एक अन्य सुभाषित में भारत की उदार भावना को इतना उच्च माना गया कि सारी पृथ्वी को अपने परिवार के सदृश स्वीकार करें। सूक्ति है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यही संकीर्णता से मुक्ति का उपाय है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में संकीर्णता का त्याग विषय पर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी। विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन क्यों व कैसे।
1: किसान भाइयों, हम खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं। कुछ किसान भाई हमारे बाहर बाहर पशु पालते हैं, तो कुछ दुग्ध उत्पादन के लिए अधिक दूध देने वाले जानवर जैसे कि भैंस है, गाय है, बकरी पालन भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी आमदनी भी इनसे ले सकते हैं इस दुग्ध उत्पादन को करके। लेकिन ये देखा जाता है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन ना होने की वजह से दूध की गुणवत्ता खराब तो होती ही है, साथ ही इस तरह का दूध का सेवन करने से हमें कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का महत्व बहुत ज्यादा है। देखा जाता है कि जब दूध में किसी तरह की गंदगी आ जाती है तो ऐसा दूध बहुत ही जल्दी खट्टा हो जाता है। ऐसे दूध से बनाए गए दुग्ध पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में दूध उत्पादन में स्वच्छता का विशेष महत्व रखना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक रहती है, जो कि कीटाणुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाती है। ये कीटाणु दूध में तेजी से वृद्धि करके दूध को खराब कर देते हैं। दूषित दूध का सेवन करने वाले व्यक्ति में तपेदिक, ज्वार, पेचिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड जैसे रोगों का संक्रमण हो सकता है। तो दूध की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए। एक तो हमारे जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पशु के अयन में होने वाली बीमारी जैसे थनेला, इनसे पशु का दूध टीबी रोग के जीवाणुओं से दूषित रहता है। ऐसा दूध पीने से मनुष्य को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो पशु के अस्वस्थ होने की दशा में पशु चिकित्सक से पशु के स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए, ताकि स्वस्थ पशु से स्वच्छ दूध प्राप्त हो। पशु के बांधने के स्थान की भी सफाई होना बहुत जरूरी है। पशु को बांधने वाले स्थान जिसे हम पशुशाला कहते हैं, वहाँ पर मूत्र का निकास और उसके गोबर को समय समय पर निकालते रहना चाहिए।

0: ताकि फर्श साफ बना रहे। यदि फर्श पक्का है तो पानी से रोज धुलाई करना बहुत जरूरी है और सप्ताह में कम से कम एक बार पानी में फिनाइल का घोल बनाकर फर्श की धुलाई अवश्य करना चाहिए। यदि कच्चा फर्श है तो उस पर सफाई उपरांत सूखा चूना या राख का छिड़काव करें। पशु को बांधने का स्थान रोशनदान युक्त हो जिसमें शुद्ध हवा और सूर्य की रोशनी आ सके। पशु गृह की पुताई साल में एक या दो बार अवश्य ही कराते रहना चाहिए। अब जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं उस पशु की भी सफाई होना बहुत जरूरी है। पशुओं की आदत के अनुसार वे कीचड़ और गोबर की गंदगी आदि में बैठकर शरीर को कीचड़ युक्त कर लेते हैं। खास तौर पर भैंस कीचड़ एवं पोखरों में बैठती है जिससे शरीर में अधिकांशतः कीचड़ गोबर मिट्टी घास फूस इत्यादि चिपक जाते हैं। इसलिए दूध निकालने के घंटा पहले पशु के शरीर को पानी से धोकर ब्रश की सहायता से गोबर धूल मिट्टी इनको साफ कर देना चाहिए ताकि दोहनी के समय ये दूध में ना गिर सके। साथ ही साथ पशु के अयन और थनों को किसी जीवाणु नाशक घोल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर धोना चाहिए और थनों को साफ कपड़े से पोंछकर तब हमको दूध निकालना चाहिए। पशुपालक भाइयों, दूध दोहने वाले बर्तन की भी सफाई होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे बर्तन गंदे होते हैं तो इनकी वजह से हमारा जो दूध है वो भी दूषित हो सकता है और जो बर्तन का मुंह छोटा एवं टेढ़ा होना चाहिए ताकि दूध में पशु वातावरण का कोई पदार्थ गिरने ना पाए। बर्तन की स्वच्छता का ध्यान देना अति आवश्यक है। दूध दोहने के तुरंत बाद गुनगुने पानी में सोडा या अन्य कोई धुलाई वाला पाउडर मिलाकर बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह से महत्वपूर्ण बात है कि जो दूध दोहने वाले व्यक्ति उसकी भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। यदि दूध दोहने वाला व्यक्ति के हाथ गंदे हैं या उसके कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं, नाखून कटे हुए नहीं हैं, तो इन सब से भी दूध दोहते समय हमारा दूध दूषित हो सकता है। इसके साथ साथ जो पशु को चारा खिला रहे हैं वो भी साफ सुथरा हो, ताजा उसे चारा खिलाएं और पानी का भी ध्यान रखें, पानी स्वच्छ पिलाएं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में यदि रखा जाए तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करके खुद स्वस्थ रह सकते हैं, पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और इस तरह के दूध से बने खाद्य पदार्थ को बेच करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी, विषय था स्वच्छ दुग्ध उत्पादन क्यों व कैसे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: अब इतना पानी कहां कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन ना धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
3: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
4: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 25वें वर्षे अगस्ट मासस्य 7वें दिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
5: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
4: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः 24,000 कोटिरूप्यकाणां परिव्ययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धनयोजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसारमाध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै, ग्रामीण समृद्ध्यै, देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं संबोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यता

0: अपेक्षायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति. भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृतपरीक्षणक्षेत्रात् मध्यमपरिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्. रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति. केन्द्रेण गोवाराज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्. येन गोवाराज्ये अनुसूचितजनजातीनां कृते विधानसभास्थानानाम् आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्. भारतीयराजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीयसमुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्. भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहेप्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीयदक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्डबातेन विद्युत्प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति. अद्य अण्डमान निकोबारद्वीपेषु, झारखण्डप्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरिप्रदेशे, कारैकलल् प्रदेशे, उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति. बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांतचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है. एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी. उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया. श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया.
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है. हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना. आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो.
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा. इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे. इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा. केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है. ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है. इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया. झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:10 पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुनिए गांधी चर्चा सुबह 7:20 पर। प्रातः 7:30 पर श्रोता साथी आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।

श्रोता साथी आनंद लेंगे सुगम संगीत का प्रातः 8:30 पर। कलाकार हैं तलत अजीज। इस घंटे की खास खबरें सुनिए सुबह 8:58 पर और 10:58 पर। प्रातः 9:00 सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथी आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। सुबह 9:30 पर कलाकार हैं अभिजीत सुबदाने। जिले की चिट्ठी प्रातः 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी। श्रोता साथी आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का सुबह 10:05 पर। प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

प्रातः 11 बजे सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गरिमामयी उपस्थिति में 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित की जाएगी। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमारे ही केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल में चर्चा के विषय होंगे राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 और किसान सम्मान निधि। साथ ही श्रोता साथी सुनेंगे दिनेश कुमार शर्मा से उनका काव्य पाठ। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है प्रादेशिक समाचार। अब से कुछ ही देर में हमारे
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे जनविश्वास अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के तीसरे दिन आज ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। और प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने तथा इससे संबंधित वीडियो बनाने और उस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह भी किया ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। समारोह में बुनकरों को 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों सहित कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान का शुभारंभ करेंगे। शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी अब से प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। खंडवा जिले में अभियान के पहले दिन आज अधिकारियों का दल खालवा विकासखंड के ग्राम सुंदर देव का दौरा करेगा। वहीं अशोकनगर की जनपद पंचायत मुंगावली के ग्राम पंचायत बीड़ में शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में 19 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जनविश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का 100% निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना और प्रशासन की पारदर्शी और संवेदनशील छवि का निर्माण करना है। धार, झाबुआ और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हो रहे हैं। शाम को प्रमुख ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो भारत और भाग लेने वाले ब्रिक्स देशों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले कल ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य एवं शामिल देशों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विभिन्न देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराया और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा आपसी सहयोग की भावना को सशक्त बनाया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेज गति से कार्य कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के सोशल मीडिया एक्स में एक पोस्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों में ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य कर रहा है। प्रदेश आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना अधूरी है और ऊर्जा क्षेत्र ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है।
3: मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारे आने वाले कई आगे साल तक की और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। हमारे अपने राज्य के अंदर एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच 2 वर्ष की अवधि के लिए साझेदारी समझौता किया गया है। एमओयू पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से डायरेक्टर कौशल डीपी सिंह और टाटा स्ट्राइव की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमेया वंजारी ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण होम स्टे संचालकों की आय में वृद्धि करना, विश्व स्तरीय आतिथ्य मानकों के अनुरूप सेवाएं विकसित करना तथा स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित करना है। साझेदारी के प्राथमिक हितग्राही ग्रामीण होम स्टे संचालक, स्थानीय युवा और पर्यटन सेवा प्रदाता होंगे। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बंदरगाहों की सफलता केवल माल ढुलाई से नहीं बल्कि उनकी मजबूत सुरक्षा से भी तय होगी। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में बढ़ते बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए आधुनिक और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल, बेहतर तालमेल और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल, भोपाल और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हुई, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अभी तक प्रदेश में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति विभाग के तुलसी शोध संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में कल तुलसी मानस प्रतिष्ठान में वर्ष 2026 का युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय को प्रदान किया गया। इंदौर ग्रामीण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने कल झाबुआ जिले में निर्माणाधीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। धार जिला मुख्यालय पर भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय ITI में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में कल 455 युवाओं का प्राथमिक चयन कर ऑफर लेटर प्रदान किए गए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 72 युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। आगरमालवा जिले के तनोडिया में आज युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बैंक स्वरोजगार ऋण और योजनाओं की जानकारी देंगे। और डिंडोरी कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में कल महिला जन प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय कार्यशाला में नशा मुक्त भारत अभियान सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे जनविश्वास अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में आज तीसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। और प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है।

0: गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 4 नवंबर 1929 को मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्रों को दिए बापू के भाषण के अंश, जो 7 नवंबर 1929 को अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर में प्रकाशित हुए।
1: खड़े होकर न बोल पाने की अपनी असमर्थता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर मुझ पर इतना मेहरबान नहीं है कि मैं सामान्य रूप से भी स्वस्थ बना रहूं। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपने मुझे जो मान दिया है वो मुझे उसका पात्र बनाए रखे और मेरा हृदय पवित्र रखे। मैं अपने बचपन से ये बात जानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता भारत की राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग है। मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू और मुसलमान खुले मन से और पूरे मेलजोल से नहीं रह सकते तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये दो बड़ी जातियां अल्पसंख्यक जातियों को सताएं या उन्हें ऐसा भी महसूस होने दें कि हिंदू मुस्लिम एकता कोई बुरी चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों की एकता सारे संसार के लिए आदर्श और शांति देने वाली हो। मैं सर सैयद अहमद खां से सहमत हूँ कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आँखें हैं। आप जैसे इस्लाम के सच्चे सपूत हैं ना, उसी तरह भारत के सच्चे और निष्कपट सिपाही बने। मैंने इस्लाम का काफ़ी अध्ययन और अनुशीलन किया है। मैं लंबे अरसे तक मुसलमानों के साथ रहा हूँ और मुसलमानों के साथ मेरा खान पान रहा है, इसलिए मुझे इस्लाम का अच्छा खासा ज्ञान है। आप सब आराम और विलास के शिकार न बने, क्योंकि सिर्फ वही देश की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है जिसका हृदय और जिसकी आदतें सादी हों। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको उन लाखों गरीब लोगों पर जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता ममता रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि खुदा आपसे सिर्फ इसी बात पर खुश नहीं हो जाएगा कि आप हर रोज कुरान पढ़ते हैं या हर रोज नमाज पढ़ते हैं। जिससे खुदा खुश हो सकता है वो असल चीज तो ये है कि आप अपने लाखों मुसीबत में पड़े भाइयों के प्रति अपने व्यवहार में दया और सच्ची सहानुभूति दिखाएं। इसलिए आप सब खद्दर को अपनाएं और खद्दर बनाने वालों को प्रोत्साहन दें।
0: गांधी चर्चा में आज आप सुन रहे थे 4 नवंबर 1929 को मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्रों को दिए बापू के भाषण के अंश, जो 7 नवंबर 1929 को अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर में प्रकाशित हुए। अब गांधी चर्चा का समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की थी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। श्रोता साथियों, आज सुप्रसिद्ध गायक सुरेश वाड़कर का 71वां जन्मदिन है और उन्हीं के सुरीले नगमों के नाम रहेगा आज का ये फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म मासूम से, सुरेश वाड़कर और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

साथियों, 8 वर्ष की आयु से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लेने वाले सुरेश वाड़कर शुरुआत में संगीत के शिक्षक बनने का ध्येय लेके चले थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय रखा था। संगीत शिक्षक से प्लेबैक सिंगर तक के इस किस्से को हम सुनेंगे। चांदनी फिल्म से सुरेश वाड़कर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में इस गीत के बाद गीतकार हैं शिवहरी और संगीतकार हैं आनंद बख्शी।

साथियों, सन 1976 में सुरेश वाड़कर ने सुर सिंगार प्रतियोगिता में भाग लिया और सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में भी चुने गए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल थे दिग्गज संगीतकार जयदेव। उन्होंने उन्हें बतौर पार्श्वगायक फिल्म गमन में शहरयार के लिखे गीत को गाने का अवसर प्रदान किया और ये अवसर उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। सुनिए वही प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे।
4: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
5: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV/AIDS और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV/AIDS के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है। समझे?
4: हाँ भाई समझा।
5: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी ग्वालियर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। अब सुनिए फिल्म सदमा से गुलजार के लिखे इलैया राजा के संगीतबद्ध किए इस गीत को सुरेश वाड़कर की आवाज़ में।

साथियों, निर्देशक राज कपूर अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर बेहद सजग रहते थे। फिल्म प्रेम रोग के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज़ की तलाश थी जिसमें मासूमियत भी हो और शास्त्रीयता से वो परिपूर्ण भी हो। ऐसे में उन्होंने प्रेम रोग के लिए सुरेश वाडकर की आवाज़ को चुना और यहीं से वे ऋषि कपूर की आवाज़ के रूप में भी खूब जाने पहचाने लगे। इसी फिल्म से सुनिए एक प्यारा सा गीत। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाळ में पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सुरेश वाडकर को 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संगीत जगत के इस मूर्धन्य कलाकार को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं फिल्म परिंदा से सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ में गीत। गीतकार हैं खुर्शीद हिलोरी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
6: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
5: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
7: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क

0: लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
5: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
6: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है,

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं तलत अजीज़। आइए सुनते हैं तलत अजीज़ की आवाज़ में ये पहला गीत।

श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं, सुगम संगीत का कलाकार हैं तलत अजीज़। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें, ये हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस घंटे की खास खबरों के बाद।
2: बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में बुनकरों को 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों सहित कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। इस दौरान जनता से सीधा संवाद, उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हो रहे हैं। शाम को प्रमुख ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में कल मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच 2 वर्ष की अवधि के लिए साझेदारी समझौता MOU किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अभी तक करीब 19% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।
3: गुड मॉर्निंग

चलिए साथियों, इन दिनों हमारा शहर ग्वालियर बारिश के फुहारों से सराबोर है। कहीं रिमझिम बूंदे हैं तो कहीं तेज बारिश ने सड़कों और गलियों को सावनमय कर दिया है। मौसम सुहाना है, हरियाली मन को सुकून देती है और गर्मी से राहत भी मिली है। बच्चे बारिश में भीग कर खुश हो रहे हैं और लोग इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसी मौसम के साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी आती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, बरसात अपने साथ मच्छर और कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है। इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। साथियों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बरसात के मौसम में सबसे अधिक फैलती हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है घर और आसपास में जमा पानी। मच्छर ऐसे ही रुके हुए साफ या गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़े से पानी से क्या होगा, लेकिन यही थोड़ा सा पानी मच्छरों के पनपने के लिए साथियों पर्याप्त है। इसलिए कूलर, गमले, छत, पुराने टायर, नारियल के खोल या किसी भी बर्तन में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में कम से कम एक बार कूलर का पानी अवश्य बदलें और आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली लगाना भी एक अच्छा उपाय है, जिससे मच्छर अंदर न आ सके। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने की कोशिश करें और बुज़ुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, बरसात के दिनों में सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि दूषित पानी और भोजन से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस मौसम में टाइफाइड, दस्त, हैजा, फूड पॉइजनिंग और पीलिया जैसी बीमारियां भी तेज़ी से फैल सकती हैं। इसलिए हमेशा साफ और शुद्ध पानी पीजिए। यदि संभव हो तो पानी उबालकर या फिल्टर करके उपयोग करें। ताज़ा और घर का बना भोजन खाइए और खुले में बिकने वाली फल, चाट पकौड़ी या अन्य खाद्य पदार्थों से थोड़ा बचिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा अधिक होता है। और साथियों, अगर तेज़ बुखार आए, शरीर में दर्द हो, आँखों के पीछे दर्द हो या अत्यंत कमजोरी महसूस हो, तो इसे सामान्य वायरल समझकर नज़रअंदाज नहीं करना। समय रहते डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिए। साथियों, बरसात का आनंद लेना भी ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी। छोटी छोटी सावधानियाँ हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं। याद रखिए, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारी अपनी जागरूकता से होती है। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि पूरा मोहल्ला भी, हमारा जो है, हमारा पूरा शहर जो है वो स्वस्थ रहेगा। आइए इस बरसात हम सब मिलकर अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर को साफ सुथरा रखें और इस रिमझिम रिमझिम बरसात का आनंद लें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, कभी आपने किसी हथकरघे को चलते हुए देखा है? धागों की खटखट की वह मधुर लय, बुनकर के हाथों की तेज और सधी हुई फूर्ती, और धीरे धीरे आकार लेता हुआ एक सुंदर जीवंत वस्त्र। सच कहिए तो ये केवल कपड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें किसी कलाकार का धैर्य, समर्पण, वर्षों का अनुभव और उसकी पूरी जीवन यात्रा बुनी हुई होती है। हर धागा जैसे एक कहानी कहता है, और हर डिज़ाइन उस मेहनत की पहचान बन जाता है। इन्हीं मेहनतकश बुनकरों और उनकी अद्भुत कला को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का गहरा संबंध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। वर्ष 1905 में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की साथियों शुरुआत हुई थी, जब देशवासियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था। ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने की दिशा में एक मजबूत कदम भी था। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2015 से भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। साथियों, जब भी हम किसी हथकरघा से बनी साड़ी, दुपट्टा, गमछा, शॉल या कोई अन्य वस्त्र खरीदते हैं, तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि किसी बुनकर के घर में उम्मीद, रोजगार और सम्मान का दीप भी जलाते हैं। ये खरीददारी सीधे सीधे उन परिवारों की आजीविका से जुड़ी होती है जो पीढ़ियों से इस कला को जीवंत रखे हुए हैं। बनारसी, चंदेरी, माहेश्वरी, कांजीवरम, पोचमपल्ली और पश्मीना जैसे विश्व प्रसिद्ध वस्त्र न केवल भारत की पहचान है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। आज के आधुनिक युग में मशीनों का बोलबाला है, तेज उत्पादन और सस्ते विकल्पों की होड़ है, लेकिन हाथ से बुने वस्त्रों की साथियों बात ही कुछ और होती है। उनमें जो आत्मीयता, बारीकी और जीवंतता होती है, वो मशीनों से संभव नहीं। हर बुनाई में एक अलग कहानी छिपी होती है, हर पैटर्न में एक परंपरा जीवित रहती है। यही कारण है कि हथकरघा केवल एक उद्योग नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारी विरासत है। साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल की भावना को केवल नारा न माने, बल्कि उसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। त्यौहार हो, विवाह हो, जैसे विशेष अवसर हो या दैनिक उपयोग, यदि हम हथकरघा उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं तो न केवल स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाखों बुनकरों के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता के नए रंग भर जाएंगे। आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों को अपनाएंगे, स्थानीय बुनकरों को इस समृद्ध परंपरा को गर्व से आने वाली पीढ़ियों तक उनके माध्यम से सुरक्षित और जीवंत रूप में पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

साथियों, एक शिशु जब इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोलता है तो उसे सबसे पहले जिस स्पर्श से सुरक्षा, अपनापन और जीवन का पहला विश्वास मिलता है वो स्पर्श है उसकी माँ का, उसकी माँ का स्नेह। और उस स्नेह का सबसे अनमोल प्राकृतिक और जीवनदायी रूप है माँ का दूध, जो न केवल भोजन है बल्कि शिशु के संपूर्ण विकास की नींव भी है। इसी महत्वपूर्ण संदेश को घर घर, गांव गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं, परिवार और समाज को ये समझाना है कि शिशु के स्वस्थ, सुरक्षित और मजबूत जीवन की शुरुआत माँ के दूध से ही होती है। साथियों, विशेषज्ञों की स्पष्ट सलाह रहती है कि जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर ही शिशु को स्तनपान कराना आरंभ करा देना चाहिए, क्योंकि यही समय उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। साथ ही जीवन के पहले 6 महीने तक शिशु को केवल और केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, बिना किसी अन्य आहार या पानी के। इसके बाद भी पूरक आहार के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है, शिशु के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच से कम नहीं होता। ये न केवल उसे संक्रमणों से बचाता है बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बच्चा जीवन की शुरुआत से ही अधिक स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। साथियों, स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। ये माँ के शरीर को प्रसव के पश्चात जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है, कई बीमारियों के जोखिम को कम करता है और माँ तथा शिशु के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है, जो जीवन भर के रिश्ते की नींव बनता है। लेकिन साथियों, आज भी कई बार जानकारी का अभाव कहिए या गलत धारणाओं या सामाजिक झिझक के कारण माताएं स्तनपान से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करती हैं। ऐसे में परिवार, समाज और विशेषकर घर के प्रत्येक सदस्य का सहयोग सबसे अधिक आवश्यक है। यदि घर का हर व्यक्ति माँ का साथ दे, उसे सही वातावरण और प्रोत्साहन दे, तो शिशु को बेहतर पोषण और स्वस्थ जीवन की शुरुआत मिल सकती है। साथियों, याद रखिए, स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भारत की नींव है। जब हमारे देश के बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भविष्य, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए विश्व स्तनपान सप्ताह केवल माताओं का नहीं बल्कि पूरे समाज में जागरूकता, जिम्मेदारी और सहभागिता का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और सही जानकारी के प्रसार का संकल्प लें, ताकि हर बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी, सुरक्षित और मजबूत शुरुआत मिल सके।

साथियों, आपसे बातें करते करते मुझे वक्त का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब इशारा कर रही है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। अपनी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं अभिजीत सुगदाणे। पखावज पर संगत कर रहे हैं जयंत गायकवाड़। आइए सुनते हैं अभिजीत सुगदाणे के स्वर में ध्रुपद धमार राग मेघ में।

0: अभी आप सुन रहे थे अभिजीत सुगदाणी के स्वर में ध्रुपद धमार राग मेघ में। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, ये हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप तक पहुंचाई जा रही है जिले की चिट्ठी। आज आप सुनेंगे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का है, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शाजापुर जिले में इन दिनों पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रभक्ति, जनकल्याण और विकास से जुड़े कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिल रही है। मानसून के बीच एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन भागीदारी का

व्यापक समर्थन मिल रहा है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ आम नागरिक भी पौधरोपण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीन क्लीन भैरव टेकरी अभियान के तहत 1,00,000 पौधे लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक रविवार बड़ी संख्या में लोग पौधरोपण के साथ पहले लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प भी ले रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो इसको लेकर पूरे जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 15 अगस्त को मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रिजू बाफना ने अधिकारियों को समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के साथ शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन और आमजन भी राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सावन माह में धार्मिक आस्था भी पूरे जिले में दिखाई दे रही है। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए कांवड़ यात्राएं निकाल रहे हैं। जिले के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का क्रम निरंतर जारी है। जिले में यातायात पुलिस विशेष वाहन जांच अभियान चला रही है। अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशलाइट, वीआईपी एवं सरकारी स्टीकर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला की अपील के बाद अनेक वाहन स्वामी स्वयं ही ऐसे उपकरण और स्टीकर हटाकर नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास भी तेज हुए हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत शाजापुर जिले के 17 बीआरसी केंद्रों के माध्यम से किसानों को बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैव आदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के 25 क्लस्टरों में 3,125 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य लेकर अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में जिले भर में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में माताओं को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान प्रारंभ कराने और 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में 1054 आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत स्थानीय महिला समूहों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मक्सी के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, दवा उपलब्धता और साफ सफाई की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में भी जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन अंकुर FLN की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रिजु बाफना ने बीते दिनों उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने और कमजोर प्रदर्शन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट शाजापुर में जिले के चारों विकास खंडों में लगभग 50 जन शिक्षकों के लिए 2 चरणों में 5-5 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो इस दिशा में भी शाजापुर जिले की महिलाएं अपनी नई पहचान बना रही हैं। स्वसहायता समूहों से जुड़ी बैंक सखी सुनीता दिलोदिया ने बैंक ऋण और आजीविका मिशन के सहयोग से शाजापुर में साड़ी सेंटर की शुरुआत कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मिलावट के विरुद्ध विशेष निगरानी अभियान लगातार जारी है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जन जागरूकता की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में अनेक अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 250 से अधिक युवाओं ने भाग लेकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया। इसी क्रम में मानव तस्करी निरोधक दिवस पर बीते दिनों जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को बाल संरक्षण और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित ट्राई के राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर अपराध, स्पैम कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शाजापुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त व्याप्ति उमड़ेकर। आइए सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से ये पहला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी ने, कडला बंदर कच्छ से जगदीश चौहरी पूजा और पायल ने, साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सुनिए फिल्म कहो ना प्यार है से राजेश रोशन के संगीतबद्ध इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्वालियर से प्रणीता धुड़ेकर, हेमंत धुड़ेकर, प्रशांत कात्रे, रोहिणी कात्रे और प्रथमेश कात्रे ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

फिल्म क्रिमिनल से कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है एमएम करीम ने। गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, सूरज, कुशल वर्मा ने। साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अब सुनिए फिल्म दामिनी से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने की

माइश की है मुकाम पोस्ट फूल सिंचोड़ी तालुका पंढरपुर से। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरे मुलानी परिवार ने। साथ ही धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोता साथी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आनंद ले रहे हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आनंद बख्शी के लिखे जतिन ललित के संगीतबद्ध किए इस गीत को उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनने की फरमाइश की है न्यू बजरंग कॉलोनी गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या, श्रेया और देवांशु ने। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और देवश्री ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: अब सुनिए फिल्म लव से SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और समस्त लोखंडे परिवार ने। साथ ही अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर ने।

0: अब सुनिए फिल्म बॉम्बे से चित्रा की आवाज़ में महबूब के लिखे एआर रहमान के स्वरबद्ध किए इस गीत को, जिसे सुनने की फरमाइश की है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम बेलदार, अकरम बेलदार, उल्लाह बेलदार, आसमा बेलदार, डब्लू बेलदार और सोनम बेलदार ने। साथ ही बिहार कॉलोनी दिल्ली से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।
1: गुम सम गुप चुप गुम सम गुप चुप गुम सम गुप चुप गुम सम गुप

अब सुनिए फिल्म कभी हाँ कभी ना से गीत। गायक कलाकार हैं कुमार सानू, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं जतिन ललित। गीत को सुनने की फरमाइश की है सप्तरंगी श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दड़े, सविता दड़े, अनिकेत दड़े, रोहिणी दड़े, ऋषिकेश दड़े और जीविका दड़े ने। साथ ही पुनावले पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अंबिका सोनवणे और विशाखा सोनवणे ने। साथ ही राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा और राकेश जैन ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म विरासत से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। सुनिए जसपिंदर नरूला की आवाज़ में गीत, जिसे सुनने की फरमाइश की है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी ने। साथ ही खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा ने, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का और डुगू सिक्का ने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: एकता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 8 जनवरी तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। मंत्रालय से लेकर जिले तक के अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को फील्ड में जनता से सीधा संवाद करेंगे। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जोवखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिहा ने आज आसन में आयोजित कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अश्मिता ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15 और 21-19 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, सुबह के 11:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं, सबसे पहले जो गीत हमने लिया है वो है लता मंगेशकर की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म से। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

पड़ोसन फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुरों से सजाया है आरडी बर्मन ने, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने। फिल्म का नाम है पड़ोसन।

लता मंगेशकर के गाए पड़ोसन फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में भारत सरकार द्वारा आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के सजीव प्रसारण के लिए कुछ ही देर में हम जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognizes the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the award selection committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देश भर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुनाई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित हैं। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: नमस्कार, माननीय राष्ट्रपति जी एवं मंच पर विराजे विशिष्ट अतिथिगण, आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की द्विपक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
2: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं।
3: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
1: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India handmade e-marketplace. Handloom hearts, cottage, kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill, and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada un bunkar behnon aur bhaiyon ko jinke bune hue taane baanon se hamara jeevan rangeen jeevant aur ek memory ke saath juda rehta hai. I once again welcome the Honorable President, Madam, and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
0: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. I'll request the Honorable Minister, श्री गिरिराज सिंह, to kindly felicitate the Honorable President.
3: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
0: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल हैं, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल हैं, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
3: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
3: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी.

0: somebody of a jamdani sari. अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो. आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है. और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी. हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश. आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी. बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज. जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए. कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी आपका विशेष उत्पाद. अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी. आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी. जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी. आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल. और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम. हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़. आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी. पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक. फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी.
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा.
2: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sari. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari. Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari. Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari. And Sri Vankar Kesha Bhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And

0: And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
1: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage.

0: विविधता और जनसभा की प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एज वी गेदर हियर टुडे वी रिमेंबर 7 अगस्त 1905 व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिजॉल्व फॉर सेल्फ रिलायंस। मोर देन अ सेंचुरी लेटर अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दैट स्पिरिट कंटिन्यूज थ्रू द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर वीवर्स एंड आर्टिजन्स। माननीय राष्ट्रपति जी, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने GI टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को GI पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने GI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में GI पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary of Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards. For your craftsmanship, innovation and dedication, you continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman, पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी DC हैंडलूम श्रीमती M बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया।

0: क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम, एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में, हम लोगों ने, विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम

किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गौहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गौहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया। 35 लाख आए, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीवर भाई अपने बच्चों को IISTE में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IISTE से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम, 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किया है, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा बीवर को।
दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितनी

0: कितना आज के काम का है उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 ppm पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 ppm पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आप बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठे बैठे,
3: मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई नहीं बोले मैडम

अब का महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विश्व संस्थाओं के संरक्षित भी किया है। हथकदा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। मैं हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कही बोली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहाँ से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो सब है। हम विदेशों में नज़र क्यों डालें। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उस उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था।
बंगाल विभाजन के विरोध

0: में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सर्व और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हदकोटा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार

0: बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। प्रसारित किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार द्वारा आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ए आर रहमान की आवाज़ में अभी आपने स्वदेश फिल्म का ये गीत लिखा। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था और संगीत दिया था ए आर रहमान ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 23वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 23वां भाग। अब तक आपने सुना कि रानी मैनावती नखला मेखला अनिरुद्ध और जीवक की सहायता से महान अनिष्टकारी तंत्र मंत्र की ज्ञाता पंजरा का अंत कर देती हैं। राजा भर्तृहरि को एक साधु फल देता है जिसका सेवन करने वाला चिरकाल तक रूप और यौवन संपन्न रहेगा। अब आगे।

देवताओं की सो जाने पर भी संसार के व्यापार में व्यवधान नहीं आता, अर्थात अग्निदेव सो जाए तो भी आग जलाती और पकाती रहेगी, वायुदेव के सो जाने पर भी गति और संचरण होता रहेगा। इंद्र की निद्रा में भी मेघ बरसते रहेंगे, सूर्य सृष्टि को प्रकाशित करता रहेगा, पृथ्वी शस्य अन्न उगाती रहेगी, समुद्र रत्न उगलते

0: करते रहेंगे। राजा अनुपस्थित, महामात्य अस्वस्थ, फिर भी अवंती का राज्य चल रहा है। प्रजा जैसे राजा के बिना जीने की अभ्यस्त हो गई है। महाकाल के प्रताप से, संरक्षण से, अनुकंपा से अन्य कोई राज्य होता तो राजा की ऐसी उदासीनता और अनुपस्थिति से विप्लव मच गया होता। अपने बंग देश वापस लौटने के लिए मैनावती आतुर हैं, किंतु महामात्य के अनुरोध पर उसकी वापसी कुछ दिनों के लिए और टल गई।
1: राजकुमारी
2: जी,
1: महाराज फिर बिना कुछ बताए अज्ञात की ओर चले गए। पहली बार तो इन बूढ़े कंधों ने राज्य का भार वहन और सहन कर लिया, किंतु अब मैं स्वयं को सक्षम नहीं पाता हूं। मेरी अस्वस्थता देख ही रही हो, आशा की किरण एक ही है कि तुमने 12 वर्ष पाल वंश के राज्य की धरोहर संभालकर गोपीचंद को युवा बनाया है। अब वो सक्षम हैं। इसी तरह कुछ दिन और अवंती में ठहरकर महादेवी पिंगला को राजकार्य में दक्ष और दृढ़ बना दो।
2: पित्री, आप भी जानते हैं कि गोपीचंद अभी युवा है और षड्यंत्र रचने वालों की वहां भी कमी नहीं। मेरे लिए यह धर्म संकट की स्थिति है। जब से विक्रम महेशमति जनपद में व्यस्त हुए हैं, उनकी विलासिता में कमी आई है। उनके स्वभाव का परिवर्तन आप भी अनुभव कर रहे होंगे, किंतु
1: जानता हूं पुत्री, गोपीचंद हो या कुमार विक्रम, ये वह ही ऐसी है जब कामनाओं पर नियंत्रण करना कठिन होता है, विशेषता किसी शासक या कुमार के लिए। प्रभुता सदैव मनुष्य को दंभ की पालकी में बैठाकर स्वेच्छाचार की ओर ले जाती है। देह के आवेग में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी संभल नहीं पाए।
2: यदि मैं आपका अनुरोध मानकर यहां कुछ दिन और रुक भी जाऊं, तो भी मुझे नहीं लगता कि राजरानी पिंगला का मन राजकाज में लग सकेगा। शासन के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है मान्यवर। न जाने क्यों मुझे लगता है कि महाराज और महारानी के बीच दुराव की कोई ग्रंथि है जिसके अपराध की स्मृति उनके बीच धुंधलाती रहती है। रानी पिंगला प्रकट तो होने नहीं देती, किंतु इस धुएं में वो घुटती रहती है। आप इस राज के महामात्य हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप उनकी फांस और त्रास से परिचित होंगे।
1: राजपुत्री, ये सच है कि महारानी की भूल या उनके दोष की उतनी जानकारी मुझे है जितनी महाराज को। महाराज ने अत्यंत वेदनाग्रस्त होकर मुझे वो घटना बताई थी। महारानी से मैं कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तत्काल उस नायक को बंदी बना लिया। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में है जब उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लाया गया।
2: आपने उससे क्या पूछा?
1: क्या मैं एक सामान्य नायक से राजमहिषी के संबंध में सीधे प्रश्न कर सकता था?
2: फिर?
1: मैंने पूछा था कि क्या महारानी ने उसे यह विशेष अमृत फल दिया था।
2: क्या उत्तर था उसका?
1: सीधा सा उत्तर, हाँ,
2: धृष्ट रहा होगा वो।

0: से वो उस वेश्या से प्रेम करता था, और दूसरा कारण ये कि वेश्या रूप जीवा है और चिर रूप यौवन के रहते हुए उसे किसी के आगे दीन होकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
1: आश्चर्यजनक।
0: जब मैंने उससे पूछा कि महादेवी ने यह फल तुम्हें क्यों दिया, तो उसका उत्तर था कि ये तो महादेवी ही जाने। अंततः मुझे हृदय पर पत्थर रखकर यह पूछना पड़ा कि महादेवी से तुम्हारा क्या संबंध है। उसने उसी सहजता के साथ उत्तर दिया, सेवक हूं, स्वामी या स्वामिनी द्वारा दिया गया कृपापूर्ण उपहार अथवा उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता।
1: इस उत्तर से तो किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता।
0: हाँ, मैंने अनेक विद पूछा, नरक से भी दारुण भृंग गुहा में पहुंचकर भी उसने रानी पिंगला की कामना का रहस्य उद्घाटित नहीं किया। जिन अपवाद के भय और राजकुल की मर्यादा में बंध कर मैंने उसे दंडित तो किया, किंतु राजकुमारी असंदिग्ध रूप से उसने सेवक का धर्म निष्ठापूर्वक निभाया था। इस घटना के लिए मुझे आत्मग्लानि है।
1: पितृ, राज्य वैद्य के अनुसार अब आप पूर्णतः निरोग हैं, बस कुछ दिन विश्राम की आवश्यकता है। मैं सोचती हूं कि मुझे राजा की खोज में निकलना चाहिए। मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर ही अपने राज्य जाना चाहती हूं।
0: किंतु तुम महाराज को पाओगी कहां? अब तो वो कहीं भी जा सकते हैं।
1: पिंगला का कहना है कि उस रात वो स्वप्न में त्रिकूट, रावण, पाणिनि, जैनाचार्य जैसे शब्दों को बुदबुदा रहे थे। शमशान में पंजरा द्वारा जागृत शव ने भी उनका पता बतलाया था कि वो महेशमति के मार्ग पर एक भैरव के साथ हैं। वो वज्र भैरव ही होगा, गुरु गोरखनाथ का शिष्य।
0: मेरा अनुमान है कि महाराज स्वतः ही लौटेंगे। हमारे लिए उनकी प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस बार उनके आने पर मैं महामात्य का शीर्ष पद सिंहासन के पाए पर रख दूंगा। अब इसका भार मुझसे नहीं सकता।
1: आप ये कैसे जानते हैं कि महाराज निश्चित ही वापस आएंगे?
0: मुझे अब भी लगता है कि महारानी पिंगला उनके चित्त में सबसे प्रमुख स्थान पर अधिपत्य किए हुए हैं। उन्हें तो वापस आना ही पड़ेगा।
2: महामात्य रोग से उबर गए पर चिंता से ना उबर पाए। महाराज लौटेंगे, लौटना ही है उन्हें। पहले की भांति उन्हें लौटना होगा क्योंकि राज्य सुरक्षित नहीं है। महाराज की अनुपस्थिति में राज्य अधिकारियों का प्रमाद सिर उठा रहा है। उनकी स्वयं की अस्वस्थता ने स्वार्थियों को अवसर दे दिया है। गहन सोच में पड़े थे महामात्य, प्रश्नों की भीड़ में घिरे हुए। इस आपातकाल में वैसिका का सानिध्य उन्हें बहुत बल देता है। वैसिका उनके पक्ष, आहार की देखभाल और राज्य कार्यों की चिंता दूर करने में पूरा दिन यहीं बिताती है और सायंकाल राजमहालय लौटती है, जहां महादेवी उसकी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही होती है।
3: स्वागतम, पधारिये आर्य वसुंधरा। महामात्य आपसे भेंट की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
4: वैसिका, कैसे हैं महामात्य?
3: स्वस्थ हैं, स्वयं देख लीजिए।

0: वयसिका, तुम भैषज्ञ त्रिलोचन की भगिनी हो ना, उनकी अग्रजा?
1: हाँ आर्या।
0: सर्वथा सुयोग्य और सरल है तुम्हारा अनुज, मैं उसे पुत्रवत मानती हूँ।
1: यह कोई पुण्य योग ही है कि उस मातृहीन को आपके मातृत्व की छांव मिली है। वो सचमुच सरल चित्त है।
0: महामात्य, मैं वैसिका से कुछ बात करना चाहती हूँ, अलग एकांत में।
2: अरे आपको मुझसे अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी भाभी? सेवाश्रम में नागदत्त के साथ रहकर आप कुछ अधिक औपचारिक हो गई हैं। आप वैसिका को जहां चाहे ले जा सकती हैं। अब तो वो राजमहालय से भी स्वतंत्र है।
0: जाने दीजिए महामात्य, आपसे क्या छुपाना। मैं त्रिलोचन के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। उसने आपको स्वास्थ्य लाभ कराया है, निश्चय ही महान चिकित्सा विदों की परंपरा को सहेजने के लक्षण उसके पास हैं। इसीलिए भी, क्योंकि धन की लिप्सा उसमें नहीं है, धन उसे आकर्षित नहीं करता। अरे वैसिका, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ।
1: अरे मैं ठीक हूँ।
0: मैंने कहा त्रिलोचन मेरे पुत्र जैसा है। पूर्णरथ, तुम्हारे सहपाठी नागदत्त भी उसे अपना आत्मीय ही मानते हैं, तो मेरी चिंता त्रिलोचन को लेकर है वैसिका।
1: क्या वो अपनी विद्या कौशल को धन वैभव से विनिमय की ओर उन्मुख हो रहा है?
0: नहीं वैसिके, नहीं, ये मेरा आशय नहीं है।
1: क्या उसने अपनी विद्या को विशेष लोगों के लिए सुरक्षित किया है? वो अकिंचन और संपन्न की पीड़ा में भेद करने लगा है?
0: नहीं वैसिके, नहीं, बात कुछ और है। कैसे कहूँ, पहले ये मेरा अनुमान भर था, लेकिन अब मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि त्रिलोचन चारों मित्रा के आकर्षण में प्रेमानुरक्त है। तुम कुछ कहोगी नहीं वैसिका?
1: प्रेम और अनुरक्ति पर मैं क्या कहूं। हारे, त्रिलोचन जिस वय में है उसमें ये स्वाभाविक ही है।
0: किंतु पात्र और अपात्र का ध्यान तो रखना ही होगा ना वैसिके। चारुमित्रा वय में उससे काफी बड़ी है, वह धनिकों श्रीमंतों के हाथ की कठपुतली है। त्रिलोचन के लिए उसने एक भ्रम जाल रचा है, वो कुछ दिन क्रीड़ा के बाद त्रिलोचन को पुराने वस्त्र की तरह घूरे पर फेंक देगी। इन तितलियों का स्वभाव ही यही होता है।
1: आपने आर्य श्रेष्ठी से इस विषय में चर्चा तो की होगी?
0: की थी वैसिका, और करनी ही थी, किंतु वो किसी की कब सुनते हैं। बोले चारु मित्रा अपने वैभवमय जीवन का त्याग करके यदि अशक्त अकिंचन पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम में आई है तो मैं तो उसका स्वागत ही करूंगा। मैंने उन्हें समझाया कि वह सेवा के लिए नहीं, त्रिलोचन के लिए आई है। किसी दिन उसे ले जाएगी तो हाथ मलते रह जाएंगे।
2: फिर नागदत्त ने क्या कहा?
0: कहते क्या महामात्य, वही पुराने संवाद। एक त्रिलोचन जाएगा तो दूसरा कोई आ जाएगा, नागदत्त भी नहीं होगा तो कोई और अन्य आ जाएगा। कहते हुए वे चले गए। इसीलिए महामात्य, मैं कहती हूँ कि वैसिका अपने भाई को समझाए। पुण्य कामिनी कभी स्वकीय नहीं होती, उसके हृदय की था पाना असंभव है। आप ही बताएं महामात्य कि संबंधों में कुल और वय का विचार तो रखना ही होगा ना। मैं जानती थी वैसिका कि ये दोनों मित्र उत्तर देने में समान रूप से कृपण हैं। मैं तुमसे अपेक्षा रखती हूँ वैसिके कि तुम ही कुछ करो।
1: अरे उत्तर मेरे पास भी नहीं है। समय ने हम भाई बहन को अलग कर दिया था, फिर संयोग ने हमारा मिलन कराया। कुल की बात क्या करूं, वे भेषज्ञ ना होकर यदि मेरी भांति दास के रूप में बिक जाते तो। संयोग ने मुझे रानी पिंगला की सेवा में पहुंचा दिया। यदि किसी बार बनिता ने मुझे क्रय कर लिया होता तो मैं किसी वैश्यालय में होती। रहा वय का प्रश्न तो परस्पर प्रेम राग का वैसे कोई संबंध नहीं होता।
0: वैसिका, तो तुम दोनों के संबंध से सहमत हो?
1: नहीं आर्य, सच तो ये है कि मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। पता नहीं उनके संबंध क्या और कैसे हैं, कहां तक हैं, कहां पहुंचेंगे। यदि ये संबंध उनके कर्तव्य में बाधक नहीं बनते तो सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। त्रिलोचन भाग्यशाली है कि उसे आपकी ममता का प्रसाद मिला, अन्यथा उसकी इतनी चिंता कौन करता। उसने जीवन की ऊंची नीची लहरें देखी हैं।
3: भीतर आ जाओ प्रतिहारी, क्या सूचना है?
4: देवी, कुमार विक्रम महामात्य से भेंट की प्रतीक्षा में हैं।
2: कुमार यहां? हाँ, भेंट तो करनी ही होगी, यहीं मिलना उचित रहेगा। वैसे का प्रतिहारी को कहो कि वो उन्हें सादर ले आए और तुम उनके सत्कार की व्यवस्था करो। क्षमा चाहता हूं भाभी, महिष्मती से महाराज के अनुज कुमार विक्रम आए हैं, अवश्य कुछ मंत्रणा करनी होगी। आप अंतवास में पुत्रवधु की सेवा ग्रहण करने का अनुग्रह करें।
0: ठीक है महामात्य।
5: प्रणाम निवेदन करता हूं आर्य पूर्णरथ।
2: आइए कुमार विक्रम, स्वागत है आपका, आसन ग्रहण करें।
5: अरे अरे, आप हम सबके समादरणीय हैं, कृपया बैठे रहें। आपको स्वस्थ देखने की प्रबल इच्छा थी, आने में कुछ झिझक हो रही थी। मैंने बहुत उद्दंडता की है, उसकी आत्मग्लानी बाधक थी। स्यात कुल और बल का दंभ रहा होगा। अब समझ पा रहा हूं कि इसी दंभ ने महाबली रावण की सोने की लंका सहित उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। आप इस राज्य और राजकुल के संरक्षक अभिभावक हैं, क्षमा मांगने का अधिकार तो मुझे देंगे ही।
2: आसन तो ग्रहण करिए पहले।
5: नहीं, मैं तभी बैठ सकूंगा जब आप क्षमा कर दें, अन्यथा इसी तरह वापस चला जाऊंगा। आपको स्वस्थ देखना था सो देख लिया।
2: बैठे कुमार, ये सच है कि धन यौवन राजमद मनुष्य को भ्रम में डाल देता है, किंतु मनुष्य को संस्कार भी तो मिलते हैं। कुल के संस्कार उसे गर्त से उबार भी लेते हैं। लंकापति रावण का दंभ बहुत घना था और ऋषि पुलस्त के कुलीन संस्कार भी उसे संभाल नहीं पाए। त्रुटि और असावधानी किसी से भी हो सकती है। बिराजी बिराजिए।
5: जो आज्ञा।
2: कुमार, आपने दक्षिण सीमा के दस्युओं का उन्मूलन जिस कौशल से किया है उससे मुझे अतीव प्रसन्नता होती है। मैं आपको साधुवाद देने में महिष्मती आना चाहता था, किंतु अस्वस्थता की बाधा आ गई।
5: महाराज की अनुपस्थिति का समाचार फैलने के साथ ही अवंती के शत्रु अवसर का लाभ उठाने की ताक में हैं। दस्यु दल के साथ चालुक्यों के कुछ सैनिक भी थे। हमने दो सैनिकों को बंदी बनाया है मान्यवर।
2: हां कुमार, ये गंभीर समाचार है।
5: लगता है कि महिष्मती पर कलचुरी अपने अधिकार को भूले नहीं है, उनसे सावधान रहना होगा। सूचना मिली है कि अवंती और विदिशा के मध्य विवादित क्षेत्र वेदवती में नागभट्ट के वंशजों ने अतिक्रमण कर लिया है। मैंने इस संबंध में महादेवी से चर्चा करनी चाही तो उन्होंने आपका नाम लिया। महाराज की अनुपस्थिति में आप ही तो हैं जिनसे चर्चा की जा सकती है।
2: कुमार, आपका आगमन मेरे लिए सुखद रहा। शैथिल्य के कारण आपका समुचित सत्कार भी नहीं कर पा रहा हूं। परिचारिका द्वारा लाए इस पाटल अर्क को ग्रहण कर लीजिए, मैं तो इन दिनों पथ्य तक ही सीमित हूं।

0: मान्यवर, मेरे एक सहयोगी बाहर खड़े हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। कवि हैं, तथागत नाम है उनका।
1: अरे, उनको भी साथ में ले आते?
0: वो आपके साथ देवी वैसिका से भी भेंट करना चाहते हैं।
1: वैसिका से? वो किस तरह से परिचित हैं?
0: तथागत उनका प्रशंसक है। उसने बताया था कि एक अवसर पर राज्य के अधिकारियों की अनिच्छा और अवहेलना के बाद भी देवी वयस्का के सहयोग से वो प्रजा की पीड़ा महारानी तक पहुंचाने में सफल हुआ था। इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं। महादेवी पिंगला ने भी तथागत को देवी वयस्का से भी भेंट करने को अनुदेशित किया था। क्या हुआ आर्य? कुछ कष्ट है क्या? अब रहने दीजिए, तथागत से भेंट की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी सेवक को बुलाता हूँ।
2: आप अपने आसन पर बिराजी कुमार, महामाती कभी कभी थक जाने पर ऐसी ही प्रतिक्रिया करते हैं, ओह आह जैसे शब्द हठात निकल जाते हैं।
0: देवी वयसिका, आप?
2: सेविका कुमार का अभिवादन करती है, महामाते स्वस्थ हैं।
1: वैसिका, सहारा लेना चाहता हूं।
2: अवश्य आर्य, अनुमति दें तो कवि तथागत को बुला लिया जाए। एक बार उन्हें प्रजा के आंदोलन को मुखर करते हुए देखा था, अब कैसे हैं देखना चाहूंगी।
1: अवश्य अवश्य।
3: पूर्णरथ वैसिका का नाम सुनते ही चौंक पड़े थे। आज का दिन क्या महाकाल ने उन्हें चकित करने के लिए, चौंकाने के लिए नियत किया था? महाश्रेष्ठी की भार्या वसुंधरा वैसिका का सहयोग मांगती है त्रिलोचन और चारु मित्रा की गुत्थी सुलझाने के लिए। उन्हें अपना प्रथम शत्रु मानने वाला कुमार विक्रम उनका कुशल क्षेम पूछने स्वयं आता है। अब वो ना तो धृष्ट है और ना ही प्रगल्भ। सुविनीत सामने बैठा है, पता नहीं उसके मन में क्या है। इसके पश्चात फिर वही वैसिका।

ये वैसे का कहीं महाकाल की महामाया का प्रश्नपूर्ण परिसर तो नहीं? और इसी बीच महाराज कहाँ हैं?

अभी आप महेश कटारी द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 23वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार सुभाष सक्सेना, महामात्य अरशद इकबाल, मैनावती दिव्या पवार, वैसिका प्रमिला दिवाकर, वसुंधरा ज्योति केने और कुमार संजय मेहता।

परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं, जिसका कारण वो चमत्कारी फल है जिसे उन्होंने रानी पिंगला को दिया था। उसने नायक को और नायक ने वेश्या को, फिर वेश्या ने पुनः राजा को दे दिया। चारुमित्रा के कहने पर वे पुनः उज्जैनी आ जाते हैं, परंतु वे उद्विग्न रहते हैं। पुनः वे महालय से शब्द के उस रहस्य को।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी कायक अंतारे का।

0: 23वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: बारहवीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में बुनकरों को 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों सहित कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हथकरघा बुनकरों और कारीगरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से इन शिल्पकारों ने भारत की परंपराओं को संरक्षित और समृद्ध किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और #नेशनल डे का उपयोग कर वीडियो साझा करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आज से 19 अगस्त तक 3 दिवसीय धागा एक पहचान द थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 8 जनवरी तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अभी तक करीब 19% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए बहनों मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, भारत के संस्कार और संस्कृति की यदि बात करें तो यहाँ की कला और संस्कृति सबसे प्राचीन है और पूरे विश्व में ये अपना एक अलग ही वर्चस्व रखती है। इसी प्राचीन कला को आगे बढ़ाने और इसे विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए ही भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बहनों, इस दिन की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। ये दिन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। हथकरघा दिवस का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य देश के हथकरघा बुनकरों के काम का सम्मान करना और इस उद्योग को आगे बढ़ाना है। बहनों, इस दिन बुनकरों का सम्मान किया जाता है, हाथ से कपड़े बुनने वाले कारीगरों की मेहनत और कला को बढ़ावा दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर बने हथकरघा उत्पादों को उपयोग करने के लिए और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। बहनों, हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर मजबूत करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये दिन बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ। हथकरघा उद्योग में महिलाओं के काम करने से वे आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर रही हैं। जी हाँ, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की हथकरघा कला मशहूर है। मध्य प्रदेश में चंदेरी और महेश्वरी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में बनारसी ब्रॉकेट साड़ियाँ, तमिलनाडु में कांजीवरम सिल्क, गुजरात में बांधनी और पटोला। मेरों महिलाएं हथकरघा प्रक्रिया के हर चरण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, चाहे वह बुनाई के पूर्व के सारे कार्य जैसे सूत कातना, धागे की रंगाई, ताना बाना तैयार करना और करघे को सेट करना, ये सभी कठिन काम मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। इस उद्योग से ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे काम करने का अवसर मिला, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से महिलाओं को शहरों की तरफ होने वाले पलायन को भी रोका जा सका। हथकरघा भारत की प्राचीन विरासत है। महिलाएं अपनी बेटियों और आने वाली पीढ़ियों को ये पारंपरिक कला सिखाकर इसे जीवित रखती हैं। हथकरघा उद्योग केवल कपड़ा बनाने का जरिया नहीं बल्कि

0: ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। बहनों, यदि इन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाए तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती हैं। ये पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर इस काम को, इस विरासत को संजोए हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इस उद्योग से जुड़े सभी साथी एक दूसरे का हाथ थामकर यूं ही अपना जीवन चला रहे हैं और भारत की प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं कुछ इस तरह से।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ।

0: मैनू अभी हम सुन रहे थे फिल्म सीता और गीता से ये प्यारा सा गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। मैनू आज के समय में बच्चों के हाथों में मोबाइल देकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बच्चे ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन खेलों की जो हमारे समय में हम खेला करते थे, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, छुपन छुपाई हो, चाहे वो पिट्टू हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, कितने आउटडोर गेम्स थे जो हम खेलते थे और मनोरंजन करते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे केवल स्क्रीन पर गेम खेलना जानते हैं और यदि उनसे मोबाइल को हमें दूर करना है तो हमें फिर उन्हीं पारंपरिक खेलों की तरफ लौटना होगा, और जब वो खेलेंगे तो उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होगा और उनका पढ़ाई में भी उतनी ही तेजी से मन एकाग्र होगा। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को फिर से शिक्षा और खेल की तरफ लौटाना होगा, उसके लिए प्रयास करने होंगे और अपने बच्चों के साथ स्वयं खेल खेलना होगा। कितना महत्वपूर्ण है बच्चे के बचपन को समझना, उनकी बचपन की यादों को जिंदा रखना। तो चलिए फिर से हम शिक्षा और खेल की तरफ अपने बच्चों को ले चलते हैं इस वार्ता के माध्यम से। वार्ता है शिक्षा और खेल और वार्ताकार है फातिमा बेग। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता।
1: एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी एकाग्र नहीं रहेगा और शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार खेल जीवन के लिए आवश्यक है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अपने अनेक प्रकार के दवाओं का सामना करते हैं। परीक्षा का तनाव, भविष्य की चिंता, डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग और शारीरिक गतिविधियों में कमी, ये सभी समस्याएं युवाओं के सामने हैं। ऐसे समय में खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि तनाव दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खेल हमें केवल दौड़ना, कूदना या जीतना नहीं सिखाते, बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। खेल हमें अनुशासन, समय का सम्मान, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, धैर्य, संघर्ष और हार से सीखकर आगे बढ़ने का साहस देते हैं। यही गुण आगे चलकर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में सफलता की आधारशिला बनते हैं। आज दुनिया में अनेक देशों ने शिक्षा प्रणाली में खेलों को अनिवार्य स्थान दिया है। हमारे देश में भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी समग्र शिक्षा पर बल देते हुए खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थी बनाना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना है। प्रिय श्रोताओं, यदि हम अपने बचपन को याद करें तो पाएंगे कि कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद, क्रिकेट, फुटबॉल और अनेक पारंपरिक खेल हमारे जीवन का हिस्सा थे। इन खेलों ने हमें मित्रता, सहयोग और आत्मविश्वास दिया। आज तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बीतने लगा है। इससे शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में खेलों को फिर से जीवन का हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है। खेलों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नियमित खेल कूद से हृदय मजबूत होता है, मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मोटापा, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए प्रतिदिन कम से कम कुछ समय खेलों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। लेकिन खेलों का महत्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल अत्यंत लाभकारी है। खेलते समय शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो तनाव कम करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। जो विद्यार्थी नियमित खेलते हैं उनमें एकाग्रता अधिक होती है और वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खेल हमें हार और जीत दोनों का महत्व समझाते हैं, हर प्रतियोगिता में केवल एक विजेता होता है, लेकिन हर प्रतिभागी कुछ ना कुछ सीख कर लौटता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर प्रयास सफलता में नहीं बदलता, लेकिन हर प्रयास हमें अनुभव देता है। यही अनुभव भविष्य की सफलता का आधार बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन स्वयं एक खेल है और खेल जीवन का विद्यालय। यहाँ हर दिन नया अनुभव मिलता है, नई चुनौती मिलती है और आगे बढ़ने का नया अवसर मिलता है। प्रिय श्रोताओं, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, स्वस्थ और संवेदनशील नागरिक बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में खेलों का योगदान अमूल्य है। जब पढ़ाई और खेल साथ साथ चलते हैं, तभी व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव होता है। जैसे कि शिक्षा में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार है। वे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नियमित खेल कूद से शरीर स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और फिटनेस बनी रहती है। मानसिक विकास, खेल तनाव कम करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं तथा निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं। अनुशासन और समय प्रबंधन, खेल विद्यार्थियों को नियमों का पालन, समय का महत्व और जिम्मेदारी निभाना सिखाते हैं। टीम खेल सहयोग, आपसी विश्वास, नेतृत्व क्षमता और दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। सच, ईमानदारी, निष्पक्षता, धैर्य, सहनशीलता और खेल भावना जैसे गुण विकसित करते हैं। शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार खेल जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है, ताकि स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जा सकें। विद्यार्थी के या एक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा और खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेलों की भूमिका व्यक्तित्व विकास और खेल भावना जैसे गुण खेलों से ही प्राप्त होते हैं। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन भी नियमित खेल कूद करने वाले विद्यार्थी अधिक ऊर्जावान रहते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। खेल से करियर के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आज खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जिस प्रकार पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार खेल जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय और विद्यालय में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक हो गया है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जा सकें।
0: बहनों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता शिक्षा और खेल। वार्ताकार थी फातिमा बेग। बहनों, क्या आप जानती हैं कि आज आपका प्रिय आकाशवाणी छतरपुर अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है? क्या आपको पता है कि 1923 जून में पहला रेडियो प्रसारण बॉम्बे से शुरू हुआ था? इसके बाद कोलकाता में रेडियो सर्विस शुरू की गई थी। 1930 में सरकार ने इन सभी केंद्रों को अपने नियंत्रण में लेकर इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया। जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। और हाँ, 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना गया। और इस तरह से रेडियो ने अपने 90 वर्षों का सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है। और आज हम सभी छतरपुर बुंदेलखंड की हृदय स्थली में स्थित आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। बहनों, सिर्फ रेडियो हमारे लिए रेडियो नहीं है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब यही घर घर मुस्कान, संगीत और संस्कार लेकर आता था। जैसे ही आकाशवाणी की सिग्नेचर धुन बजती है, लगता है घर में कोई अपना सा आ गया। सुबह समाचार, फिर भक्ति, फिर महिलाओं के अपने कार्यक्रम, सब काम करते करते हम कब सुन लेते हैं और कब हमारे लिए ये इतने उपयोगी हो जाते हैं कि हम इनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, हमें पता भी नहीं चलता। रेडियो में कितनी सुंदर कविताएं, कितनी कोमल भावनाएं, मन जैसे महक उठता है। जी हाँ बहनों, आकाशवाणी छतरपुर में प्रसारण और कार्यक्रमों का सफर 4 दशक से भी पुराना है, जिसने बुंदेलखंड की माटी से जुड़े कई कार्यक्रमों के माध्यम से अपने स्थानीय श्रोताओं को बांधे रखा और अपने इन श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। और इस केंद्र से महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, जो पहले नारी जगत के नाम से जाता था और आज आपके साथ महिला सभा के नाम से प्रस्तुत है, ये भी समय के साथ, परिवर्तन के साथ बदला और इसका नाम भी बदला और इसके अंदर आने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बदली। महिला सभा जो आज हर महिला की आवाज है, अधिकार है और आवश्यकता भी। मैंने संगीत प्रेमियों के लिए भी महिला सभा में एक ही गीतकार, एक ही संगीतकार और एक ही कलाकार जैसे कार्यक्रम तो मानो ज्ञान का खजाना थे। गीत सुनने के साथ उनके पीछे की कहानी भी पता चलती थी। मुझे तो आज भी उपयोगी जानकारी बहुत उपयोगी लगती है, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों से अपनी बहनों को जानकारियां देते हैं, चाहे वह किचन गार्डन हो, चाहे वह सौंदर्य सलाह हो, चाहे वह मौसम के अनुसार आपको अपनी स्किन केयर कैसे करनी है इस पर बात हो, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम अपनी बहनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। मैंने समय जो बदला है, लेकिन सच्ची आवाज, सच्ची जानकारी और सच्चे रिश्तों की जरूरत कभी नहीं बदलती। मैंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करने और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानूनी भेंट वार्ताएं भी हमारे केंद्र से प्रसारित की गईं। इन सभी महिलाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जानकारी के पिटारे में बहुत कुछ था बहनों, लेकिन मनोरंजन की बात करें तो वो भी लाजवाब है। महिला सभा का बहुत सारे गीत संगीत, काव्य पाठ, कवि गोष्ठी, झलकी, जो हमारी बहनों को हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए लुटपुट कर जाते हैं। सोचो, यदि हमारा महिला सभा ना होता तो हमारी बहनें कितनी दुर्लभ जानकारियों से अधूरी रह जाती। बहनों, हर साल के गुजरते वक्त में हम हर क्षेत्र में पूरे साल की महिलाओं की उपलब्धियों को संजो कर अपनी बहनों के लिए लेकर आते हैं, जिससे उनका जनरल नॉलेज और साल भर के क्रियाकलापों पर उनकी पकड़ अच्छी हो जाए। फिर से शुरू हो जाता है नए महिला सभा का नया सफर। और इतने सालों से हम आपके साथ यूं ही नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा और आपका केवल रेडियो का नाता नहीं, दिल से दिल का नाता है। तकनीक बदलती है, लेकिन विश्वास की आवाज नहीं बदलती। आकाशवाणी ने केवल समाचार नहीं सुनाए, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ा, महिलाओं को मंच दिया, प्रतिभाओं को पहचान दी और परिवार को संवाद का अवसर दिया। यही कारण है कि आज भी उसकी आवाज दिलों में उतनी ही ताजा है और हमारे और आपके एहसास ने हमारे तो मन को छू लिया।

बहनों, अभी हम सुन रहे थे फिल्म याराना में किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा ये सुरीला संगीत संगीत था राजेश रोशन का। बहनों, बरसात का मौसम जितना खुशनुमा होता है, जितना मजेदार होता है, जितना आनंदित करने वाला होता है, उतना ही टेंशन वाला भी होता है स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, बरसात के दिनों में यदि हमने थोड़ा भी कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ बासा खा लिया, तो निश्चित रूप से हमारे बीमार पड़ने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। बरसात के दिनों में होता क्या है, नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया और वायरस और फंगस ये तेजी से पनपते हैं, जिससे खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। यदि ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई या स्टोरेज पर ध्यान ना दिया जाए तो फूड पॉइजनिंग का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार, मतली और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा आपको गर्म और ताजा बना हुआ खाना खाना है। बाहर के खाने को अवॉइड करना है, जैसे गोलगप्पे, चाट, कटे फल, पकौड़े और अन्य खुले खाद्य पदार्थ ना खाएं। बहनों, दूषित पानी ना पिएं, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर का ही पानी पिएं। फल और सब्जियों में कीटनाशक, बैक्टीरिया और मिट्टी हो सकती है, इसलिए इन्हें गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही इनका उपयोग करें। बचा हुआ खाना लंबे समय तक कमरे के तापमान पर ना रखें। खाना बनाने और खाना खाने के पहले कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ जरूर धोएं। दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं, हमेशा ताजा डेयरी उत्पाद का ही इस्तेमाल करें और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें और आप हाइड्रेट रहें, इसके लिए आप नारियल पानी, नींबू पानी और गन्ने का जूस और भी कई तरीके के रस ले सकती हैं। तो बहनों, हम थोड़ी सी सावधानी के साथ खूब आनंद ले सकते हैं इस मानसून का, तो सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और देखिए ना, आपसे बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। और चलते रेडियो पर ये चार पंक्तियां, मनोरंजन का साधन भारी, सुर संगीत की दुनिया प्यारी, बिना तार के संदेश सुनाता, हर घर से यह रिश्ता नाता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आकाशवाणी यही संदेश सुनाए, ज्ञान खबर और गीतों की वाणी, सदा अमर यह गाथा पुरानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य लोकगीत। कलाकार हैं नारायण सिंह रायकवार।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं सुनील भट्ट। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दान।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। उमर इनायत के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म जय वीरू से। गीत लिखा उमर इनायत ने, संगीतकार बप्पी लहरी।
1: That's right.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी प्रदान किए। पेश है
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। अभियान के अंतर्गत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद और जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। अभियान के तहत रीवा जिले का पहला शिविर आज ग्राम पंचायत सुरवार में आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में 5 अगस्त से शुरू हुए ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज मंत्री स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। आज ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इन बैठकों में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और आपसी साझेदारी को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी भोपाल पहुँच रहे हैं। वहीं अन्य सदस्य देशों की ओर से उनके राजदूत, उपमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेंगे। मिस्र का प्रतिनिधिमंडल वर्चुअल माध्यम से जुड़ेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: कल शनिवार को भारत की अध्यक्षता में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। अगले 3 दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और

सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक पेड़ बेटी के नाम अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों ने कल आगरमालवा जिले के विभिन्न गांवों में सोयाबीन फसल का निरीक्षण कर कीट रोग प्रबंधन की जानकारी दी। जबलपुर में आज मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन पीएम श्री एमएलबी स्कूल में किया गया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक संपदा से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम टू एनडीए के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
3: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
3: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
4: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकर

0: को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के भाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, की एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के

ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम आज का अर्जुन, गीतकार अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, असमा, शोएब, सायमा, मुश्तबा, आफिया, राउफ, शाहिद। इन्हीं के साथ है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर अकोला से। अगले श्रोता मोहाली चंडीगढ़ से हैं ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म अग्नि साक्षी से अगला गीत सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सनावद मध्य प्रदेश से, श्रोता है दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। अगले श्रोता भी सनावद से ही हैं, सादिक अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश कौड़ और शादाब। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के सुर में गीत सुनेंगे फिल्म तोहफा से। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें वंदना नगर इंदौर से आई है। श्रोता हैं कुमारी वंदना, गणेश, संजना मराठा, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण। अगले श्रोता खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

दिल का रिश्ता से गीत सुनेंगे अलका याग्निक के सुर में। संगीत नदीम श्रवण, गीतकार समीर हैं। फरमाइश हमें आई है बक्सर बिहार से, श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, फातिमा। बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। सरीमपुर से हैं आसमा खातून अंसारी, एसडी अंसारी। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। अगले श्रोता उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत आपकी फरमाइश में।

फिल्म पड़ोसन से अगला गीत सुनेंगे लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। गीत लिखा राजेंद्र किशन ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है पटियाला से, श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। अगले श्रोता बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, शिवानी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद और जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में PhD शोधार्थियों सहित स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। संसद ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य MSME क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा के शासकीय आदिवासी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु छात्राओं से संवाद में कहा कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास देश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी को पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम विवरण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम के 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:30 पर और रात 9:45 पर। शाम के ठीक 6:00 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें होंगे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम खेल जगत। इसमें मनीष गजभिये की विशेषज्ञ भारत सिंह बाधेवाल के साथ हुई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा खेल और योग। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात के 10:00। 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का। इसमें कलाकार ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी वादन आप सुनेंगे। राग होगा अडाना और देश। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5:00 सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में सबसे पहले आप सुनेंगे कलाकार नारायण सिंह रायकवार के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे कलाकार सुनील भट्ट के स्वर में भजन।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद, जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में आयोजित 77वें वन महोत्सव में कहा कि हरियाणा सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के सुझाव पर सक्रियता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि हथकरघा हमारी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, कौशल और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले दो दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा भी करेंगे। संसद ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया और मौसम विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़ और छतरपुर सहित सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

साथियों, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां तो आपने अवश्य सुनी होंगी। शब्द ही हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, शब्द ही हैं जो दूरियों को मिटाते हैं। सच ही तो है साथियों, शब्दों में लोगों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। यही शब्द जब रेडियो की तरंगों के माध्यम से घर घर पहुंचते हैं तो वे केवल समाचार ही नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, मनोरंजन और समाज की धड़कन भी बन जाते हैं। ऐसी ही जनसेवा, जनजागरण और जनसंपर्क की गौरवशाली परंपरा का नाम है आकाशवाणी, जिसका मूल उद्देश्य ही है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी छतरपुर की स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आज के युववाणी कार्यक्रम में। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ अभिदीप सुहाने, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष की यात्रा केवल समय का पड़ाव नहीं होती बल्कि समर्पण, विश्वास और निरंतर जनसेवा का प्रमाण होती है। आकाशवाणी छतरपुर ने भी अपनी इस यात्रा में अनगिनत उपलब्धियां अर्जित की हैं। साथियों, जब आकाशवाणी छतरपुर की स्थापना हुई तब इसका उद्देश्य केवल कार्यक्रमों का प्रसारण करना नहीं था बल्कि बुंदेलखंड की संस्कृति, लोक भाषा, लोक कला और जनजीवन को एक सशक्त मंच प्रदान करना भी था। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी साथियों कि पिछले 5 दशकों में इस केंद्र ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, युवा कार्यक्रम, लोक संगीत, साहित्य और सामाजिक जागरूकता जैसे अनेक विषयों पर प्रभावशाली कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। साथियों, आकाशवाणी छतरपुर ने बुंदेली भाषा और लोक संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ से प्रसारित होने वाले लोकगीत, बुंदेली कविताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य किया है। युवाओं के लिए प्रसारित होने वाला युववाणी कार्यक्रम भी वर्षों से युवा साथियों को विभिन्न माध्यमों से अनेक विषयों पर रोचक तथ्यों के बारे में और रोजगार के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता रहा है। साथ ही नई प्रतिभाओं को भी वार्ता व भेंट वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखने, अपने विचार साझा करने और समाज से जुड़ने का सशक्त अवसर प्रदान करता रहा है। साथियों, समय के साथ तकनीक बदलती रही, संचार के अनेक नए माध्यम सामने आए, लेकिन रेडियो की विश्वसनीयता, सरलता और आत्मीयता आज भी लोगों के दिलों में बनी हुई है। यही कारण है कि आकाशवाणी आज भी श्रोताओं की पहली पसंद बनी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और जनहित से जुड़े संदेशों के प्रसारण में भी आकाशवाणी ने सदैव अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन किया है। यही इसकी विश्वसनीय पहचान है। साथियों, आकाशवाणी छतरपुर की यह स्वर्णिम यात्रा आप सभी श्रोताओं की बदौलत ही पूर्ण हो पाई है। आपका आकाशवाणी के प्रति स्नेह ही हमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य को बरकरार रखने की प्रेरणा देता है एवं समय के साथ इसका महत्व और अधिक बढ़ता जा रहा है। आज स्थापना दिवस की इस 50वीं वर्षगांठ पर हम उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों, तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों, लेखकों और श्रोताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग और समर्पण ने इस केंद्र को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथियों, आकाशवाणी छतरपुर परिवार स्वर्णिम जयंती की गौरवशाली यात्रा पूर्ण करने पर आपका साथ, स्नेह और

विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभारी है। हम कामना करते हैं कि ये केंद्र आने वाले वर्षों में भी ज्ञान, संस्कृति, साहित्य, लोक कला और जन सेवा की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने विश्वास पर खरा उतरेगा, साथ ही समाज को सकारात्मक दिशा देने का भी निरंतर कार्य करता रहेगा। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आकाशवाणी छतरपुर के स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आकाशवाणी की स्वर्णिम जयंती के अलावा आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, तो थोड़ा सा जानकारी हम आपको उस बारे में भी देना चाहेंगे। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध परंपराओं और अद्भुत हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथियों, इन्हीं अमूल्य धरोहरों में से एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे हथकरघा उद्योग का भी है, जो सदियों से भारतीय कला, कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। साथियों, हथकरघा का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि ये शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, हथ यानी कि मानव के हाथ और करघा मतलब कपड़ा बुनने वाला यंत्र, अर्थात हाथों से चलाया जाने वाला करघा, जिस पर बिना बिजली या मशीन की सहायता के वस्त्र बुने जाते हैं, हथकरघा कहलाता है। इसी विरासत को सम्मान देने और हथकरघा बुनकरों के योगदान को पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आज की ही दिन यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 7 अगस्त की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन सन 1905 में विदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, हथकरघा भारत की ऐसी पारंपरिक करघा है जिस पर तैयार किए गए वस्त्र अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुंदर डिजाइन और सांस्कृतिक पहचान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि बनारसी सिल्क, चंदेरी, महेश्वरी, कांजीवरम, पोचमपल्ली, पटोला और असम की मूगा सिल्क जैसी अनेक प्रसिद्ध भारतीय साड़ियां और वस्त्र हथकरघा पर ही तैयार किए जाते हैं। साथियों, भारत का हथकरघा उद्योग लाखों बुनकरों और कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य केवल बुनकरों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि युवाओं और समाज को वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत की भावना से जोड़ना भी है। जब हम हथकरघा के बने उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्त्र नहीं खरीदते, बल्कि एक बुनकर के परिश्रम, उसकी कला और उसके परिवार की आजीविका को भी समर्थन देते हैं। आज के आधुनिक युग में मशीनों से बने वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के कारण हथकरघा उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में इस उद्योग को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथियों, हमें अपने त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष अवसरों पर अधिक से अधिक हथकरघा से बने वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। इससे भारतीय कारीगरों का उत्साह बढ़ेगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें यह संदेश देता है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों का सम्मान करें तथा उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्योंकि साथियों, हथकरघा केवल एक वस्त्र बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सृजनशीलता का जीवंत प्रतीक भी है। आइए साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिंदी मीडियम का ये प्यारा सा गीत। आवाज थी तनिष्का सांघवी की। कुमार के बोलों को संगीत में पिरोया था सचिन जिगर ने। आइए साथियों, कार्यक्रम में अब आपको ले चलते हैं वार्ता की ओर। विषय है अहंकार बनाम आत्मसम्मान, व्यक्तित्व का वास्तविक आधार। वार्ताकार हैं विधि पाठक।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन, उसके संबंधों, उसके व्यक्तित्व व उसके मानसिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज का विषय है अहंकार बनाम आत्मसम्मान, व्यक्तित्व का वास्तविक आधार। अक्सर लोग अहंकार और आत्मसम्मान को एक ही समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि प्रकाश और अंधकार में। एक व्यक्ति को ऊंचा उठाता है तो दूसरा उसे भीतर से खोखला कर देता है। अहंकार वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। वह अपनी उपलब्धियों, ज्ञान, पद, धन, रूप या शक्ति के कारण अपने आप को विशेष समझता है और दूसरों को कमतर आंकने लगता है। भारतीय दर्शन में अहंकार को मनुष्य के 5 प्रमुख क्लेशों में से एक माना गया है। अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, आलोचना से घृणा करता है और प्रशंसा का भूखा बन जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम पहिग्रम, अर्थात अहंकार, दर्प और क्रोध मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके विपरीत आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व, मूल्यों और गरिमा का सम्मान करना। आत्मसम्मान व्यक्ति को विनम्र बनाता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी अपनी भी सीमाएं हैं और दूसरों की भी गरिमा है। आत्मसम्मान का अर्थ किसी से श्रेष्ठ होना नहीं बल्कि स्वयं को सम्मान देने के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना है। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह अपनी बात दृढ़ता से रखता है परंतु किसी का अपमान नहीं करता। वह सफलता में विनम्र और असफलता में धैर्यवान रहता है। आइए हम इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं में सम्मान की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि वह स्वयं का सम्मान करे। जब आत्मसम्मान स्वस्थ होता है तब व्यक्ति आत्मविश्वासी, रचनात्मक और संतुलित बनता है। इसके विपरीत आत्मसम्मान की कमी व्यक्ति को हीन भावना की ओर और अत्यधिक अहंकार उसे आत्ममुग्धता की ओर ले जाता है। कार्ल रोजर्स का स्व अवधारणा सिद्धांत। कार्ल रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक वास्तविक स्वरूप और एक आदर्श स्वरूप होता है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है तब आत्मसम्मान विकसित होता है, लेकिन जब वह केवल दूसरों से श्रेष्ठ बनने की दौड़ में लग जाता है तब अहंकार जन्म लेता है। आइए अब हम इसे भारतीय दर्शन की दृष्टि से जानते हैं। भारतीय संस्कृति ने

0: सदैव विनम्रता को महानता का आभूषण माना है। कबीर दास कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा हमें बताता है कि केवल बड़ा बन जाना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारी महानता दूसरों के काम न आए तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं। इसी प्रकार उपनिषदों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है और यह किस प्रकार हमारे सामने परिलक्षित होता है। अहंकार स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, जबकि इसके विपरीत आत्मसम्मान स्वयं का सम्मान करता है। अहंकार तुलना करता है, जबकि आत्मसम्मान स्वीकृति देता है। अहंकार संबंधों को तोड़ता है, जबकि आत्मसम्मान संबंधों को मजबूत बनाता है। अहंकार आलोचना से डरता है, बल्कि आत्मसम्मान उससे सीखता है। अहंकार असुरक्षा से जन्म लेता है, जबकि आत्मसम्मान आत्मविश्वास से। आइए हम सिद्धांतों के आधार पर आत्मसम्मान और अहंकार का विश्लेषण करते हैं। सामाजिक तुलना का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर के अनुसार, मनुष्य लगातार स्वयं की तुलना दूसरों से करता रहता है। जब तुलना स्वस्थ प्रेरणा बनती है, तब आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन जब तुलना श्रेष्ठता सिद्ध करने का माध्यम बन जाती है, तब अहंकार विकसित होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। डैनियल गोलमैन के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता और नियंत्रित करता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति आत्मसम्मानी होता है, जबकि कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अहंकारी बना सकती है। जीवन के कुछ उदाहरण। हमने अनेक सफल व्यक्तियों को देखा है जो महान उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी अत्यंत विनम्र रहे। ऐसे लोग अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और सफलता का श्रेय सभी को देते हैं। दूसरी ओर इतिहास गवाह है कि अत्यधिक अहंकार ने अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों का पतन किया। भारतीय महाकाव्यों में रावण और दुर्योधन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनका ज्ञान और सामर्थ्य असाधारण था, परंतु अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया। आखिर आत्मसम्मान को विकसित कैसे करें? सर्वप्रथम व सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि स्वयं को स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं प्रेरणा लें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, विनम्रता को अपनी शक्ति बनाएं, अपने मूल्यों व सिद्धांतों से समझौता ना करें। सफलता मिलने पर स्वयं को याद दिलाएं कि यह अकेले का नहीं, अनेक लोगों के सहयोग का परिणाम है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में आत्मसम्मान अत्यंत आवश्यक है। आत्मसम्मान व्यक्ति को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है और उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। वहीं अहंकार पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में दूरी उत्पन्न करता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में सम्मान पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन सम्मान का सबसे मजबूत आधार आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है, जबकि आत्मसम्मान हमें स्वयं से जोड़ता है। अहंकार क्षणिक शक्ति तो देता है, आत्मसम्मान स्थायी गरिमा देता है। अहंकार प्रतिस्पर्धा सिखाता है, जबकि आत्मसम्मान सहयोग सिखाता है। आइए हम ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें जिसमें आत्मविश्वास हो पर अभिमान ना हो, सफलता हो पर विनम्रता भी हो, उपलब्धियां हो पर मानवता भी बनी रहे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद
1: साथियों। अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था अहंकार बनाम आत्मसम्मान, व्यक्तित्व का वास्तविक आधार। वार्ताकार थी विधि पाठक। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपका पुनः मनोरंजन करवा देते हैं एक और प्यारे गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रूक फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाज थी मोहित चौहान की और कुमार के बोलों को संगीत में पिरोया था प्रीतम चक्रवर्ती ने। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको दे देते हैं जानकारी हमारे जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल यानी खजुराहो मंदिर के समूहों के बारे में। साथियों, जब भी भारत की प्राचीन कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की बात होती है, तब मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर समूह का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। खजुराहो मंदिर समूह अपनी अद्भुत वास्तुकला, उत्कृष्ट शिल्प कला और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये भारतीय कलाकारों की अद्वितीय प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। आपको बता दूं साथियों कि खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये स्थान देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इतिहासकारों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। उस समय खजुराहो चंदेल वंश की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। साथियों, माना जाता है कि खजुराहो में कभी लगभग 85 मंदिर थे, किंतु वर्तमान में केवल 20 से 25 मंदिर ही सुरक्षित अवस्था में शेष हैं। ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः बलुआ पत्थर से किया गया है। इनकी ऊंची शिखर शैली, सुंदर मंडप तथा दीवारों पर उकेरी गई सूक्ष्म और आकर्षक मूर्तियां भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। खजुराहो मंदिर केवल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ की मूर्तियाँ मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कला, संगीत, नृत्य, प्रकृति, दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता का भी सुंदर चित्रण करती हैं। इस मंदिर श्रृंखला में हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित मंदिर शामिल हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश देते हैं। साथियों, खजुराहो की अनेक मूर्तियां अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तियां केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि अपने युग की जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाती हैं। अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्ता के कारण सन 1986 में खजुराहो मंदिर समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद इसकी वैश्विक पहचान अत्यधिक बढ़ गई। आज ये स्थल विश्व भर के पर्यटकों, इतिहास

इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसकी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को देखने यहाँ आते हैं। साथियों, खजुराहो मंदिर समूह केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की मानव सभ्यता की एक अमूल्य धरोहर है। यह हमें भारतीय संस्कृति, कला, स्थापत्य और रचनात्मकता की महान परंपरा का परिचय कराती है। साथ ही इससे हमें ये जानकारी भी मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने सीमित संसाधनों में भी ऐसी अद्वितीय कलाकृतियों का निर्माण किया जो आज भी विश्व भर के लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित करती हैं। हमें अपनी ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए तथा उनके संरक्षण के महत्व को भी समझना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भारत की इस गौरवशाली विरासत से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना। URSC यानी UR राव उपग्रह केंद्र योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है स्नातक प्रशिक्षुता। पदों की कुल संख्या है 220। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में BE या BTEC। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथियों, वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का। अब दीजिए मुझे इजाजत। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
1: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। झूठा कहीं का इस फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। गुलशन बावरा ने गीत लिखा, संगीत रचना आर डी बर्मन की।

ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सरल है और दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं। झूठा कहीं का फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं को बहलाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है, कहाँ जाओगी। सच्चा झूठा फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए। इंदीवर का लिखा है, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस दिन ही कयामत की शुरुआत हुई थी। ये चांद ये तारे भी बताते हैं चमक कर, तकसीम तेरे हुस्न की खैरात हुई थी। पराया धन फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार का गाया हुआ। आर डी बर्मन ने धुन बनाई है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

इतनी मुद्दत बाद मिले हो, कुछ तो दिल का हाल कहो। कैसे बीते हम भिन प्यारे, इतने माहों साल कहो। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म कामचोर का ये गीत है। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर ने गीत लिखा।

0: वादा तो कर लिया निभाने की चाह में, अब उम्र कट रही उसी एक निगाह में। फिल्म संगीत में आज बस इतना ही, दीजिए अनुमति नीतिका वर्मा को। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में आयोजित 77वें वन महोत्सव में कहा है कि हरियाणा सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के सुझाव पर सक्रियता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद, जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा है कि हथकरघा हमारी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, कौशल और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। संसद ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। महिला टी20 एशिया कप 2026 में भारत का सामना पाकिस्तान से 5 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, दमोह और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई,

0: बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वत पर बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गाँव की सफाई में भाग लेता है। उस गाँव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गाँव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गाँव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गाँव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए

0: कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है। हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
1: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
3: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
5: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: इतने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
4: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
3: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
6: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
4: अच्छा,
6: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
4: मामा जी।
0: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है
3: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
0: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
3: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
0: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा।
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की

0: जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

तराना तो कभी जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति का गाया क्या कहना फिल्म से ये गीत है। मजरू सुल्तानपुरी इसके गीतकार और संगीतकार राजेश रोशन।

थ्री इडियट्स फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। शांतनु मोहित्रा ने इसे स्वरबद्ध किया है, गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने इसे गाया है। फिल्म का नाम थ्री इडियट्स।

0: इस खुशबू के आगे जन्नत फीकी पड़ जाती है। सारे ही सुख मिलने पर याद इसी की आती है। देखी मैंने सारी दुनिया पर यही मुझको भाती है। मेरे देश की मिट्टी में चंदन की खुशबू आती है। इस पर ही चलना सीखा, इस पर ही दौड़ लगाई थी। मौका मिलने पर बचपन में ये मिट्टी मैंने खाई थी। यही बचपन की याद रह रहकर मुझे सताती है। देखी मैंने सारी दुनिया पर यही मुझको भाती है। मेरे देश की मिट्टी में खुशबू चंदन की आती है। मिट्टी से ही भोजन खाते, सांसें इसी से पाते हैं। कोस कोस और रोम रोम ऋणीस के हो जाते हैं। यही पेड़ों पर फलती है, खेतों में यही लहलाती है। देखी मैंने सारी दुनिया पर यही मुझको भाती है। मेरे देश की मिट्टी में खुशबू चंदन की आती है। रोटी रोजी के चक्कर में जब हम परदेश को जाते हैं, अपने देश की मिट्टी को हरदम संग ही पाते हैं। गंध इसकी निज तन से एक पल को छूट न पाती है। देखी मैंने सारी दुनिया पर यही मुझको भाती है। मेरे देश की मिट्टी में खुशबू चंदन की आती है। अब मेरी रचना है, वो है आज़ादी। सबसे बड़ा अभिशाप गुलामी होता है, सबसे बड़ा अभिशाप गुलामी होता है। पाने को आज़ादी हर गुलाम ही रोता है। जिस दिन भी पा जाता है आज़ादी, वह मारे खुशी के अपनी सुधबुद खोता है। भारत ने जिल्लत गुलामी की उठाई थी, कई कुर्बानियां देकर आज़ादी पाई थी। मिली थी आज़ादी जिस दिन भारत को, सारे ही देश ने खुशियां खूब मनाई थी। आज अमृत महोत्सव का समय आया है, सारे ही देश में माहौल खुशी का छाया है। हो रहे हैं खुश देशवासी, भारत के सारे ही वक्त आज़ादी का पावन दिन फिर लाया है। हमें देश की आज़ादी को बचाना होगा, हर नागरिक को निज धर्म निभाना होगा। गद्दार कोई आंख उठाता है देश में, चुन चुन कर गद्दारों को सबक सिखाना होगा, चुन चुन गद्दारों को सबक सिखाना होगा। अब इसी कड़ी में मैं एक शहीद के पिता की व्यथा को उसके द्वारा लिखे गए पत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटे, जब से तुम देश पर कुर्बान हो गए हो, अपने इस क्षेत्र में आसमान से भी महान हो गए हो। अंतिम सफर पर तुम्हारे उमड़ा था जन का सागर, हर आँख में थे आंसू, दिल में था गमों का सागर। यादें तुम्हारी हर पल हम सबको बहुत सताती हैं, कैसी भी करें कोशिश पर कमबख्त रुलाती हैं। रोते तो हम सभी हैं एक दूजे से मुंह छुपाकर, पढ़ते हैं जब एक दूजे के आगे अपने अपने आंसुओं को पोंछ कर। बच्चे तुम्हारे अब बहुत ही समझदार हो गए हैं, अपना बचपन त्याग समय से पूर्व सयाने हो गए हैं। करते नहीं हैं जरा भी जिद, किसी भी चीज़ को देखकर हो जाते हैं उदास, और बच्चों को पापा के संग देखकर। बेटी तुम्हारी कहती है खिलौने की बंदूक दिखाकर, पापा की शहादत का बदला लूँगी मैं फौज में जाकर। ईश्वर ने मुझे भी बुढ़ापे में इस काबिल बना दिया है, तुम्हारी गृहस्थी को संभालने के लायक बना दिया है, तुम्हारी गृहस्थी के संभालने को लायक बना दिया।
1: भैया बहनों, अब अपन सुन रहे थे काव्य पाठ देशभक्ति, स्वर था श्री दिनेश कुमार शर्मा का। तो भैया देखो, अपने कण कण में जो है देशभक्ति भरी हुई है। आज हमारे देश के वीर जवान आगे बढ़ रहे हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो वहीं हमारे अगर किसानों की बात करें तो वो देश को मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं, और हम सबके मिलके प्रयासों से ही अपना देश जो है अच्छा बन सकता है। शासन के द्वारा भी कई प्रयास ऐसे किए जाते हैं जिससे कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो, और अपने जो किसान भैया रहें उनकी सभी ज़रूरतें भी हों। क्योंकि अगर हमारे किसान अनाज ना उगाएं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना

सकता है। अगर हमारे किसान जो है मजबूत होंगे तो हमारा देश भी भैयारों मजबूत बनेगा। और इसी के लिए अपने किसानों को मजबूत करने के लिए शासन के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से जो अपने किसान भैया रहे हैं उनको खेती किसानी के लाने जो भी आर्थिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे अपने किसान भैया जो हैं जैसे कि उन्हें बीज की ज़रूरत है या खाद की ज़रूरत है या किसी प्रकार के कृषि उपकरण की ज़रूरत है या इसके अलावा भी खेती से जुड़े कई अन्य आवश्यकताएँ होती हैं उन पर वह इसका व्यय कर सकते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे किसान हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त बने, उनकी जो कृषि संबंधी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और उनकी फसल लहलहाए। तो अपन सबको भी जो है अपने जो किसान भैया हैं इन योजनाओं का लाभ जरूर लेना चाहिए अगर हमें आवश्यकता लग रही है, तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे, अपनी खेती को उन्नत बना पाएंगे। और हाँ भैया, देखो मौसम के अनुसार जो है अपन को सभी काम काज करने होते हैं। अब देखा थे ना कि बारिश जो है जिस अपनी खेती के लाने वरदान होते हैं, अगर अच्छी बारिश हो रही है तो सिंचाई व्यवस्था की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़त है, अपनी जो खेतों की मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाते हैं और अच्छी उपजाऊ होने के कारण इसमें जल का आवागमन भी बहुत अच्छा होता है, हवा का आवागमन भी अच्छा होता है। और इस मौसम में हम देखते हैं जो कि केचुआ, जो कि अपनी धरती की आंत बोली जाते हैं, भरपूर मात्रा में खेतों में दिखाई देते हैं, जो कि अपनी खेत की मिट्टी को भुरभुरा भी बनाने में सहयोग करते हैं। तो अपन को जो भी कीटनाशक अपन उपयोग करें तो ध्यान रखें ऐसे कीटनाशकों का उपयोग ना करें जो कि हमारे इन जो मित्र कीट हैं उनको नुकसान पहुंचाए। जहां तक हो सके तो जैविक खेती को अपना कर ही अपन आगे बढ़ें, क्योंकि अगर अपन जैविक खेती को अपनाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो अपने जो खेत हैं उनकी मिट्टी जो है बहुत अच्छी रहते, गुणवत्ता बनी रहते और फसलें भी हम ज़्यादा प्रकार की ले सकते हैं। वहीं जो अपनी खेती की लागत है वो भी कम होते है। कई बार देखो जाते हैं कि अपन के पास सही जानकारी ना होए तो अपन क्या करते हैं, अधिक मात्रा में खाद हैं, उर्वरक हैं, रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। अपन सोचते हैं कि इनके उपयोग से हो सकता है कि अपनी जो है कीटों की समस्या ख़त्म हो जाए, अपन को अधिक लाभ मिले, लेकिन भैया अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज़ जो उपयोग की जाती है वैसे का है अपने खेतों की मिट्टी भी प्रभावित होती हैं, साथ में अपनी फसलें भी प्रभावित होती हैं। थोड़े लाभ के चक्कर में अपन जो है अपनी भूमि की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित कर देते हैं। तो भैया ऐसी गलती से अपन को बचने हैं और जो वैज्ञानिक भैया ने सलाह देते हैं उनको मानत भय अपन को जैविक खेती को अपनाने हैं, तभी अपनी जो मिट्टी स्वस्थ होगी तो अपन को फसल से लाभ भी अच्छा मिलेगा। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है नारायण सिंह कुशवाहा का।

भैया नो, जब बारिश होत है तो अपनी धरती जो है ऐसो लगत है धानी चुनर पहन रखी होई। और भैया जे बारिश सभी के लाने बहुत जरूरी है, अपने चाहे पेड़ पौधों के लाने करे, अपने जीवन के लाने करे या फिर कोनो भी और चीज़ के लाने। तो अपन को जई प्रयास करने हैं कि जहाँ तक हो सके पानी को बचाएं और भूमिगत करने की व्यवस्था करें, क्योंकि जल है तो जीवन है और जीवन तभी है जब हम पानी को सहेजेंगे। और भैयारों अब हो रही है चलवे की बेरा, सभी किसान भैयारों को स्वाति बहन की राम राम।

0: पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कलवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। भारत और इसराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। आज ये रिश्ता केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है। कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इसराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की। साथ ही दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोनों देशों ने दोहराया। इससे पहले फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था। इस विशेष रणनीतिक साझेदारी के व्यापक आयामों को समझने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी। वाधवा जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और इसराइल के बीच पहले से ही रणनीतिक साझेदारी थी, ऐसे में अब विशेष रणनीतिक साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बात हुई तो इसकी प्रगाढ़ता और इसको लेकर जो सीरियसनेस है दोनों नेताओं के बीच में, तो क्या इसमें नया जुड़ाव हो रहा है?
3: देखिए, पश्चिम एशिया एक व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले तक यह क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
2: जी।
3: लेकिन आज वैश्विक निवेश, डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी नवाचार और समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और भारत के लिए ये क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। अब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। वो इसलिए है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसराइल आज विश्व के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है। तो आपने खुद ही कहा, जैसे जल प्रबंधन है, कृषि है, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व भर में सम्मान पूर्वक देखी जाती हैं। भारत एक विशाल बाजार है, हमारे पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

0: है और फिर विश्व में सबसे बड़ी डिजिटल आबादी वाला भारत
1: जी
0: देश है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं एक दूसरे के पूरक हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का भी जिक्र किया, तो भारत इजरायली संबंधों को नई ऊंचाई देने में राजनीतिक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखें जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल के दौरे पर गए थे, उस समय से आज तक दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे के समक्ष आत्मीयता दर्शाई है। निश्चित रूप से कूटनीति राष्ट्रों के बीच संचालित होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं होती। फिर भी जब भी हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं,
1: जी
0: तो उनके बीच स्थापित विश्वास ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान की है।
1: जी जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत और इसराइल के संबंधों की चर्चा अक्सर हम डिफेंस की बात करते हैं, यानी रक्षा सहयोग के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये साझेदारी रक्षा से बढ़कर अब तकनीकी, कृषि है, स्वास्थ्य है, नवाचार तक पहुंच चुकी है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत इसराइल संबंध अब एक बहुक्षेत्रीय साझेदारी का रूप ले चुके हैं?
0: हम रक्षा सहयोग आज भी भारत इसराइल संबंधों का सबसे सशक्त आधार है, लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में और जो आर्थिक संबंध है वे भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। उसके साथ साथ नवाचार एक नया फील्ड है
1: जी
0: जिसमें इसराइल विश्व भर में स्टार्टअप नेशन के रूप से जाना जाता है और भारत भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मुल्क बन चुका है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, साइबर सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी है और उसके साथ साथ जो भी पश्चिम एशिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं भारत और इसराइल के बीच में सामने आई हैं। इसके अलावा जो जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता का भविष्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसराइल की अपनी प्राथमिकता है और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी भारत और इसराइल के बीच में काफी सहयोग
1: जी
0: हुआ है। उसके साथ साथ दो और इस कनेक्टिविटी के ऊपर दो बड़े मुद्दे हैं भारत और इसराइल के बीच में। एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और
1: जी
0: जिसको कि हम IMEC बोलते हैं, और एक I2U2 जिसमें भारत इसराइल संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो ये दोनों जो हैं इसके चलते कनेक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी फील्ड्स उभर के सामने आई हैं भारत और इसराइल के बीच में, जैसे पोर्ट्स में एक नया आयाम खुला है और पोर्ट में भारत ने हाइफा पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम पूरी इस नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि भारत का एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है,
1: जी
0: उसमें इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसकी भूमिका अहम रहेगी।
1: और नई विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्वांटम टेक्नीस की बात करें और इस तरह की जितनी भी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उन पर इस समय पूरे विश्व का विशेष जोर है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत और इसराइल की तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए आपको कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं?
0: जैसे कि आपने रिक्रूट किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI बोलते हैं, उसके
1: जी
0: अतिरिक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिर उन्नत सामग्री विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और वैज्ञानिक आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग भविष्य की साझेदारी को मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें तो कोई भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से
1: जी
0: निर्धारित नहीं होती, बल्कि नवाचार है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, ज्ञान और लचीली आपूर्ति श्रृंखला है, जिसको हम उस नजर से अगर हम
1: जी
0: देखें तो ये सभी इतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी हैं और भारत और इसराइल की साझेदारी इन्हीं आधारों पर विकसित हो रही है। एक
1: जी
0: ओर भारत के पास विशाल प्रतिभा है और दूसरी ओर इसराइल के पास अनुसंधान है, नवाचार है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट क्षमता है। तो यही परस्पर जो पूरकता हम देखते हैं दोनों देशों की साझेदारी को
1: जी
0: भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
1: बिल्कुल, ये साझेदारी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। भारत और इसराइल दोनों वादवाजी आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के

0: किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है?
1: विरुद्ध सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आपने जिक्र किया खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध की रोकथाम और महत्वपूर्ण अवसर संरचना की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला आ रहा है। भारत और इसराइल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो राडार प्रणालियां हैं, वायु रक्षा प्रणाली है, निगरानी के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक्स है, समुद्री सुरक्षा उपकरण है, सीमा प्रबंधन प्रणालियां हैं, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और इसराइल मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सैन्य प्रौद्योगिकियां आगे आएंगी उनका संयुक्त विकास दोनों देश कर रहे हैं।
0: इस समय पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर हम देखें तो वादबाजी अत्यंत जटिल है और भारत के इसराइल के साथ गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अरब देशों और खाड़ी क्षेत्रों के देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किस तरह अपने सभी प्रमुख साझेदारों के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रख सकता है?
1: भारत और इसराइल के संबंधों का विकास वस्तुतः भारत की विदेश नीति के विकास की भी एक कहानी है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन रहा है, वैसे वैसे उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है और यही कारण है कि आज भारत एक ओर इसराइल के साथ अत्यंत घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाए हुए है, वहीं पर दूसरी ओर फिलिस्तीनी जनता की वैध आकांक्षाओं और दो राष्ट्र समाधान के अपने दीर्घकालीन समर्थन पर भी दृढ़ता से कायम है। तो यही संतुलित दृष्टिकोण आज भारत कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक माना जाता है। और यदि हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक बहुत गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और फिर नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार पश्चिम एशिया भी व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले हमने देखा था कि ये क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
0: जी,
1: लेकिन अब नए क्षेत्र खुल चुके हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भर कर उभर रहा है। तो भारत का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रवासी समुदाय भी है
0: जी,
1: निवेश भी है और संपर्क परियोजनाएं यूरोप तक पहुंच की नई संभावनाएं खुल गई हैं। तो इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है
0: जी। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया था। आपके विचार में आने वाले वर्षों में भारत इसराइल आर्थिक संबंधों के कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं?
1: हालांकि भारत इसराइल संबंधों रक्षा सहयोग बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। हीरे के व्यापार से आगे बढ़कर पहले बहुत हीरे का व्यापार हुआ करता था, उसके आगे बढ़कर आज रसायन और औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और उच्च तकनीक वाले अनेक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ रहा है। निवेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 3.93 बिलियन डॉलर था 2025-26 में और उसके साथ साथ 443 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी भारत की, जिसमें सी अरानी की जो हाइफा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी है और इसराइल की तरफ से भी 334 मिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया में निवेश हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और इसराइल ने 4 जुलाई 2026 को एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है उसकी रेटिफिकेशन कर दी है और वो इफेक्ट में आ गया है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट है दोनों तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन तरह की अग्रीमेंट है, उससे निवेश को और ज्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है और जो ई मोबिलिटी की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इसराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे
0: जी।
1: और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग का अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी, और वाधवा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिपेक्ष में देखें तो भारत इसराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में?
1: अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इसराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का और सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इसराइल भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, भारत को अगर इसराइली की नजर से देखें तो एक बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था है, तो भविष्य में विशाल संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक और बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है हमारी जो मोबिलिटी अग्रीमेंट, जिसके तहत अभी तो 20,000 इंडियन वहां पर काम करते हैं, लेकिन एक एडिशनल लेबर प्रोटोकॉल हमने साइन किया है जिसके तहत 50,000 भारतीय नागरिक इसराइल में काम करेंगे और ये 5 साल का एक व्यापक प्रोग्राम है।
0: जी बिल्कुल, वाधवा जी, आपने भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। महेंद्र कपूर का गाया फिल्म आज की आवाज फिल्म का ये गीत है। हसन कमाल ने गीत लिखा है, रवि की धुन है।

महेंद्र कपूर के गाए फिल्म तवायफ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना,

0: अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजबित करते हैं।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइन्स फाल हैं, ताकि अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइन्स पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाज़ों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़िश्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत-ए-खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में जारी सूरत हाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खुसूसी जामे शराकतदारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس صورتحال پر قریب نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ان معاملات پر قریب نظر رکھے ہوئے ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت افریقہ فورم چوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے. دونوں ممالک موضوع تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں اور یہ طے کریں گے کہ چوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات صرف دہشت گردی، مقاسمت اور تشدد سے آزاد ماحول میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کی اپنی پالیسی پر عمل آوری اور دہشت گردی کا سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال جاری رکھے ہوئے ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کو دیا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک ایم ایف این کا درجہ واپس لے لیا ہے اور پاکستان میں بننے والی یا پاکستان سے برآمد کی جانے والی سبھی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 200% بڑھا دی ہے. بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد سندھ آبی معاہدے کو ملتوی کرنے، اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے، ویزا محدود کرنے اور متعلقہ مشنوں میں سفارتکاروں اور افسران کی تعداد کو کم کرنے سمیت مختلف سفارتی اقدامات کیے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مزید بتایا کہ پاکستان اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی فوجی کارروائی بھی کی گئی ہے. بھارت اور سری لنکا نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. اس دوران بھارتی وفد کی قیادت بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کی، جبکہ سری لنکا کے وفد کی قیادت بندرگاہوں، شہری آبادی اور توانائی کی وزیر انورا کرونا تلک نے کی. بجلی کی وزارت کے مطابق دونوں وزیروں نے مجوزہ سری لنکا بھارت ایچ وی ڈی سی انٹر کنیکشن اور سمپور شمسی بجلی پروجیکٹ سمیت جاری دو طرفہ پہلوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. دونوں وزیروں نے سرحد پار بجلی کی فروخت، قابل تجدید توانائی، ترسیل کے بنیادی ڈھانچے اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سے متعلق امکانات پر تبادلہ خیال کیا. بھارت نے ٹیرف پر مبنی مسابقتی نیلامی کے فریم ورک کے ذریعے ترسیل کے نظام کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی پی ماڈل کے طور پر تیار کرنے کا اپنا تجربہ مشترک کیا. برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ آج بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی، لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے. وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی. جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے. وزیراعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3,000 سے زیادہ طلبہ سے خطاب کریں گے. اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبہ میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے. جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیا کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے. بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے. جی ایم کے کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا. اس کا مقصد ٹیکنالوجی، شفافیت، کارکردگی اور اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جی ای ایم کے سی ای او مہیر کمار نے کہا کہ جی ای ایم کا کاروبار 2016-17 میں 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 20,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے.
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार एक्सपोर्टर के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर हमारे साथ जुड़े हैं, किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं, हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कॉरपोरेट पेशेवर अफराद और माली शोबे के पेशेवर अफराद को बॉस स्कैम या खुद को सीईओ जाहिर करने वाले धोखे से खबरदार किया है। एक बयान में वजारत दाखिले ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों के जरिए पेशेवर और कारोबारी अफराद के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने से मुतालिक वाकयात की शिकायतों में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत ने महज 3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हासिल कर लिया है, जो कि मुकर्रर वक्त से काफी पहले हासिल कर ली गई पेशरफ्त की अक्कासी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक समेत शुमाल मशरकी भारत में कल के लिए शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तुंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, तेलंगाना, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ साथ शदीद बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में फर्क पड़ा और बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। मजीद बरां, भारत के महकमे मौसमियात ने कल के लिए हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अबीद।
0: इस दौरान केरलम के 4 जिलों में बहुत शदीद बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: शिमाली केरलम के अजला कसारागोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर 4 अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया 6 अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। शनिचर के रोज के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेट लिफ्टर तितली माजी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने 4th मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने MSME तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज दर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपये

0: अहलियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष बजपेयी। श्रोताओं, खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह हमें न सिर्फ स्वस्थ जीवन प्रदान करता है बल्कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगर खेलों में योग को शामिल कर लिया जाए तो यह खिलाड़ियों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर योग की बात करें तो योग को अब प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में योग में असीम संभावनाएं हैं, जरूरत है उन्हें पहचानने की।

0: भारत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: सर नमस्कारम सर।
0: भारत सिंह जी, हम सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो योग क्या है और मानव स्वास्थ्य पर यह कितना ज्यादा प्रभावशाली है?
1: योग जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का ही एक भाग है योग। और जो 6 फिलोसोफी है, इंडियन फिलोसोफी, जिसमें योग को समावित किया है, तो ये एक दर्शन है जो हमारे जीवन की पद्धति को, कैसे हम जिए उसके बारे में ये बताता है। तो योग को सरल भाषा में अगर हम समझें तो जीवन जीने की एक कला है, जिसमें हमें एक मर्यादित ढंग से कैसे जीवन जीना वो इसमें दिखाया गया है। और योग जो है हमें जीवन जीने की कला प्रदान करता है, चाहे वो आसन के माध्यम से हो, चाहे हमारी यम नियम हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो योग की क्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को खेल में शामिल किया गया है?
1: योग का एक पार्ट, जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं योग
0: जी,
1: के
0: जी।
1: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें से एक अंग है आसन। तो आसना का जो पार्ट है उसे स्पोर्ट्स के रूप में माना गया है। अभी 2019-20 में इसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, मगर इससे पहले भी योग की कॉम्पिटिशन होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और इसको भारत सरकार स्पोर्ट्स का दर्जा अभी तक नहीं दिया था, मगर काफी विद्वानों ने काफी रिसर्च करने के बाद ये सिद्ध किया कि भाई योग में भी कंपटीशन हो सकती है, क्योंकि योग के बहुत सारे पार्ट हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। अब ये जो चीजें हैं ये हर कोई जज नहीं कर सकता, और उसको जज करना बहुत असंभव की बातें होती है। तो योग का जो पार्ट है आसना, तो आसना के ऊपर जजिंग हो सकती है। तो हमने केवल पार्ट रखा है आसना, और जो फेडरेशन का भी नाम रखा है, जो जिन विद्वानों ने रखा, बड़ा सोच समझ के रखा, योगा आसना स्पोर्ट्स एसोसिएशन या योगा आसना फेडरेशन, तो वो बड़ा क्लियर कट है कि भाई हमने केवल योग के आसनों को महत्व दिया है, और आसनों के ऊपर कंपटीशन आयोजित होती है, जिसमें 11 साल से 22 साल 25 साल तक के बच्चों के लिए होता है। और उसके बाद एक और अच्छी चीज ये है योग में कि इससे बड़ी उम्र के मास्टर जो हो जाते हैं, बड़ी एज सीनियर जो हो जाते हैं, उनके लिए भी कंपटीशन आयोजित होती है। अभी मैंने देखा है सिविल सेवा सर्विसेज में, जिसमें योग को उन्होंने शामिल किया और योग की प्रतियोगिताएं आयोजित की। तो हम कह सकते हैं कि योग का एक भविष्य अच्छा है, और योग में जो प्रतियोगिताएं हो रही है उससे एक सकारात्मक समाज के अंदर एक संदेश जा रहा है, जिससे लोग अपना रहे हैं। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो अच्छा है ही, अगर उसको खेल के दृष्टि से भी अपना रहे तो एक लाइफ के लिए और करियर के लिए भी हम उसको देख सकते हैं।
0: जी, तो हम अपने तमाम अभिभावक को जो भी यह कार्यक्रम सुन रहा है उनको यही कहना चाहेंगे कि योग में जो भी अपना भविष्य अपने बच्चों के लिए तलाश रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा खेल है।

0: यह न सिर्फ आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, बल्कि आपको एक प्रोफेशनली अगर आप इसमें कुछ करना चाहे तो इसमें भी करने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। तो योग जरूर करें, इसका पालन करने से निश्चित ही आपके दिनचर्या में अवश्य रूप से सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। अब हम आपसे ये जानना चाहें, जैसे अभी आपने बात की हमसे कंपटीशन की, तो हम
1: जी
0: आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कंपटीशन इंडिया में होते हैं योग के।
1: पहले भी योग के कंपटीशन होते हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो योग में जो अभी भारत सरकार ने मान्यता जिस फेडरेशन को दी है, तो एक तो वो कंपटीशन होती है जिसको हम ओपन कंपटीशन कहते हैं।
0: जी
1: तो एक ओपन कंपटीशन होती है कॉलेज स्तर पे, जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर खेलो इंडिया,
0: जी
1: नेशनल गेम्स, इन सब तमाम जो एक बड़े प्लेटफॉर्म है उन सब में योग को शामिल किया है।
0: जी
1: स्कूल गेम्स में शुरू से ही योगासना की कंपटीशन आयोजित होती रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि योग का एक बहुत ही अच्छा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और इसको एशियाई गेमों में या एशियन चैंपियनशिप में भी शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि
0: जी
1: क्योंकि कम समय में, मतलब 2019-20 में इसको मान्यता मिली और आज हमारे जो खिलाड़ी हैं वो एशियन चैंपियनशिप में आपको देखने को मिलेंगे,
0: जी
1: जो कि एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। और जो बच्चे अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भाई हम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इसको अपनाएं, इसमें हम करियर भी अपना देख सकते हैं, क्योंकि
0: जी
1: जो खेल कोटा होता है उसमें भी योग को शामिल किया है। तो हर
0: जी
1: एक जगह पर जहाँ पर भी स्पोर्ट्स की जो जो फैसिलिटी अदर गेम को मिलती थी, ओलंपिक गेम को मिलती थी, वो हमारे जो भारतीय खेल है उनको भी मिल रही है।
0: क्या भविष्य में ओलंपिक में शामिल किए जाने की योग की संभावना है?
1: बिल्कुल है, जब इतनी बड़ी संख्या में जो कंट्रियां योग को अपना रही है तो आगे चल के तो नेचुरल रूप से बहुत ही आसानी से ओलंपिक में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र 3-4 सालों में ही हमने एशियन चैंपियनशिप में इसको इंक्लूड करा दिया है।
0: जी जी
1: तो ओलंपिक में तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा
0: जी
1: उसमें।
0: जी और शायद यही वजह है कि योग का लोहा पूरा विश्व मान चुका है और 21 जून को इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया जाता है।
1: जी
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग सीखने के लिए प्रशिक्षक की भूमिका कितनी ज्यादा अहम होती है?
1: देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिसमें बिना गुरु के योग सीखना असंभव है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है विद्यार्थियों को पता नहीं होती है। हम अगर सोशल मीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे देख के हम योग करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाते हैं वो उतनी बारीकियाँ नहीं बता सकते उसमें, क्योंकि बहुत
0: जी
1: लंबी वीडियो हो जाएगी और अपलोड नहीं होगी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक योग शिक्षक का होना परम आवश्यक है, क्योंकि योग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है डिफिकल्ट, जहाँ एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि आसन में अगर आप गए और उस आसन से वापस नहीं आ पा रहे हैं, या आपका शरीर वहां से या स्ट्रेच आपने मसल्स कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो जानना या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए
0: जी
1: योग में शिक्षक की भूमिका अहम मानी गई। और हमारे जो योग दर्शन है, चाहे पतंजलि योग हो या हठ योग प्रदीप का हो या घेरण सहित हो, उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि योग की शिक्षा बिना गुरु के संभव नहीं है।
0: जी अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में आता है वो यह है कि योग सीखने के लिए सही उम्र क्या है या क्या होनी चाहिए?
1: देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिसमें उम्र का कहीं कोई वो नहीं है इसमें कि हम इसी एज से स्टार्ट करें। मेरे जो गुरु हैं B.S. अयंगार, उनकी 2012-13 में 100 साल से ऊपर एज थी और
0: जी
1: वो आसन वैसे कर पाते थे जो आज हमारे जो प्रोफेशनल एथलीट हैं, योगा आसना करने वाले खिलाड़ी हैं, वो भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी उस एज में। तो मैं कह सकता हूँ कि योग में कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। फिर भी हम एक कंपटीशन के तौर पे, एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पे अगर हम इसमें अपना कैरियर बनाना चाहें तो करीब 5 से 6 साल की उम्र होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको करे और समझ सके।
0: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है कि योग करते वक्त किन नियमों का पालन करना चाहिए अगर हम ये प्रोफेशनली खेल की बात करें तो?
1: देखिए, हमारे योग शास्त्र में चाहे हठ प्रदीप का हो या घेरण संहिता हो, उसमें यम नियम के साथ साथ उन्होंने आहार की बात कही है, वातावरण की बात कही है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो जो योग के साधक होते हैं उनका आहार ऐसा आहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए,
0: जी
1: मित आहार होना चाहिए। और भगवद गीता में भी आहार के बारे में बताया है कि जो 4 प्रकार के आहार होते हैं, और वो आहार ऐसे हों कि जो हमारे शरीर को पुष्ट करे
0: जी,
1: है ना।

0: और राजसिक, तामसिक और सात्विक, ऐसे तीन प्रकार के आहारों की चर्चा है जो हमारे शरीर और मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो आहारों की एक बात हम कर सकते हैं। दूसरा ड्रेस कोड, तो योगा आसना में हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है, हमें बॉडी मूवमेंट करना होता है, तो हम कॉटन के कपड़े उसमें पहनते हैं, थोड़े ढीले कपड़े होना चाहिए, एक योगा मैट होना चाहिए, ऐसे वातावरण में करें जहाँ खुली हवा हो, सफोकेशन ना हो, गर्मी ना हो, कीट या मच्छर ऐसे आदि ना हो, तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। और इसके अलावा हमें दिनचर्या अपनी योग के हिसाब से अपनी बनाना चाहिए कि हमें कितने टाइम पे उठना चाहिए। योग का जो उत्तम समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जिसमें हम 3:30 बजे के बाद 5 बजे से पहले अगर हम ध्यान या योग साधना करते हैं तो वो हमारी लाइफ में भी और हमारी जो विद्या है जिसे हम सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, उसको अगर हम उच्च शिखर तक ले जाएंगे तो वो जो काल होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर उसमें अगर हम साधना करते हैं तो वो निश्चित ही हमें ऊंचाई तक ले जाने में सहायक होगी। तो इन सब बातों का ध्यान हमें योग करते समय रखना चाहिए।
1: और प्रोफेशनली जो लोग योग को अपनाते हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होते हैं?
0: हाँ, उनके लिए जब वो करते हैं तो ये अंतरंग योग, योग में भी दो पार्ट हैं, एक अंतरंग एक बहिरंग। अगर हम अंतरंग योग की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो उन साधकों के लिए बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिव्य समय होता है जिसमें वो साधना करें तो उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो योग साधक हैं जो केवल आसन तक सीमित हैं, जिनको शरीर को तोड़ मरोड़ के जो योगा कंपटीशन में जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करना है, तो वो किसी भी समय करें। बस उनको ये ध्यान रखना है कि करीब जब योग आसन करने जाएं तो वो खाली पेट जाएं, एंटी स्टमक रहें, करीब 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही जो आहार लें या भोजन करें उसका वो ध्यान रखें। और जब वो योग साधन करने जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा फल या कोई जूस ये पीकर करें तो ज़्यादा उनको फायदा होगा। तो इस टाइप से वो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है।
1: जी, आम इंसान योग को अपना कर निश्चित एक अच्छी लाइफ अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कोई खिलाड़ी, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी है
0: जी,
1: वो अगर योग को अपनाते तो क्या उससे उनके खेल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?
0: बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है खेल का, ऐसी परिस्थिति में योग हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि योग में आसन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम ध्यान कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं, मुद्राएँ कह सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें वहाँ हम उस डिप्रेशन से, उस प्रेशर से हम लड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल के हम एक बेहतर प्रदर्शन करने में हमें सहायक होती है।
1: जी जी जी, और जो योग है प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है वो आपकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो योग को अवश्य अपनाना चाहिए, निश्चित ही से सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। भारत जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो योग में अपना भविष्य तलाश रहे हैं?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि योग हमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो प्रदान करता ही है, अगर हम इसको कैरियर के रूप में भी देखते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी आप कॉम्पिटिशन्स खेल सकते हैं, क्योंकि एक सिविल सेवा सर्विसेज के नाम से कॉम्पिटिशन्स होती है जो पूरे देश में चलती है उसके, और उससे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स भी होते हैं जो सभी को पता है। और दूसरी बात करें हम जो सर्विस में नहीं है या प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि मास्टर्स कॉम्पिटिशन्स लगातार इसकी आयोजित की जा रही है, तो हर एज की उसमें कॉम्पिटिशन होती है, चाहे 25 से 35 हो, 35 से 45 हो, या 45 से 55 हो, तो ऐसे एज ग्रुप उन्होंने रखे हैं। और उनके आसन भी इतने टिपिकल नहीं है कि हम नहीं कर सकते, उसको आम जन अगर थोड़ा सा अभ्यास करे तो वो कर सकता है, उसमें कैरियर अपना बना सकता है। तो एक जो बड़ी उम्र के हैं वो भी योग में आ सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अपना कैरियर चुनना है या तलाश रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मंच है जहाँ एक बड़े पवित्रता से पूरी पारदर्शिता के साथ योग की कॉम्पिटिशन्स आयोजित की जाती है, जिसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना करियर चुन सकते हैं, और आने वाले समय में ये एक फ्यूचर ओलंपिक गेम है, क्योंकि एशियन गेम्स में तो ये शामिल हो ही चुका है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इसके आयोजित होते हैं, तो इसमें बेहतर संभावना है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग को अपनाएं। योग, अगर आप योग के परम शिखर तक नहीं भी पहुंच पाए तो आप अपने

0: अभी आपने सुनी खेल और योग विषय पर योग विशेषज्ञ भरत सिंह बांगेवाल से की गई है बातचीत। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

मृत्यु दंड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया है। जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आनंद मिलिंद ने स्वरबद्ध किया।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म मृत्युदंड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। पहला गीत शामिल कर रहे हैं हम कुदरत फिल्म का, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। सुनना चाहा है वसंत जी हजारे, गांधी कैंप इचककरंजी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र से, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। ननौरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा की। कालका से शुभचंद

बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज की कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे की मंगल ट्रेडर्स, शिव मंगल ट्रेडर्स और शुभलाभ कॉम्प्लेक्स पयोर जिला रायगढ़ से ये पत्र है। राजगढ़ मध्य प्रदेश से मासूम फिल्म का गीत भूपिंदर और सुरेश वाडकर का गाया, गुलजार की शब्द रचना है और आर डी बर्मन की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं कंवर कॉलोनी बढ़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, सनावत से राजकुमार बुडाना, रानू, लक्ष्मी और यश कुमार बुडाना की, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज की। सुनना चाहा है हमसाया फिल्म का गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ। शेवान रिजवी ने इस गीत लिखा, ओपी नैयर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोत्री आफिया खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की। सुनना चाहा है चोरी चोरी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया, हसन जयपुरी ने बोल लिखे हैं और संगीतकार

मधुमति फिल्म का ये गीत था, मुकेश का गाया हुआ। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे सलिल चौधरी। ये फरमाइश भेजी थी गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पसंद अपनी भेजते हैं। अब कार्यक्रम में ये गीत है फिल्म महबूबा से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी ने गीत लिखा और आर डी बर्मन की धुन है। सुनना पसंद किया है दतरंगी से भागत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी लेवई से, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने।

लता मंगेशकर के गाये फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में लीजिए सुनिए ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग अडाना। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। इनके साथ तबला संगतकार नयन ज्योति घोष।

अभी आप सुन रहे थे ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग अडाना। अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग देस। इनके साथ तबला संगतकार हैं नयन ज्योति घोष। विलंबित ताल 3 ताल में निबद्ध है और विलंबित गत 1 ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग देस। इनके साथ तबला संगतकार थे नयन ज्योति घोष। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute